सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ

0: साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन। विषय है ईमानदारी।
3: एक प्रतिष्ठित कार्यालय की प्रोन्नति समिति के सदस्य अपनी कई बैठकों के बाद भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। विषय उसी कार्यालय के चार योग्य, कर्मठ, कुशल प्रशासकों में से किसी एक को ही प्रोन्नति देने का था। अंत में उस समिति के सदस्यों ने इस विषय को कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के पास इस निर्णय के साथ भेज दिया। हम लोगों के विचार से किसी एक को ही प्रोन्नत करना शेष तीनों के साथ अन्याय होगा, इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से ये निर्णय करते हैं कि इनमें से किसी एक व्यक्ति की प्रोन्नति का फैसला आप ही करें। इसके बाद उन अधिकारियों के मासिक वेतन के भुगतान के पूर्व सर्वोच्च अधिकारी ने वेतन भुगतान कर्मचारी को बुलाकर कुछ अत्यंत गोपनीय आदेश दिए। यथासमय चारों अधिकारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया। वेतन भुगतान के बाद ठीक दूसरे दिन उन चारों में से एक अधिकारी आकर वेतन भुगतान करने वाले कर्मचारी को ये कहकर कुछ रुपये लौटा गया कि मेरे वेतन लिफाफे में गलती से ये रुपये वेतन के रूप में अधिक थे, कृपया इसे वापस ले लें। इसके कुछ दिनों के बाद इन चारों में से एक व्यक्ति की प्रोन्नति की सूचना कार्यालय में प्रचारित कर दी गई। शेष तीनों सर्वोच्च अधिकारी के पास पहुंच गए कि उनकी प्रोन्नति क्यों नहीं की गई। प्रोन्नति देने का कारण स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च अधिकारी ने कहा, आप तीनों भी योग्य हैं किंतु ईमानदार नहीं है। ईमानदारी के अभाव में आपके सारे गुण अधूरे हैं। आपके वेतन के लिफाफे में वेतन के रुपये से अधिक रुपये थे, किंतु आपने इसकी चर्चा तक नहीं की। आप में से जो ईमानदार है उसी की प्रोन्नति हुई है। तीनों लज्जित होकर लौट आए। ये घटना कहने सुनने में छोटी लग सकती है, किंतु इसमें ईमानदारी का सामर्थ्य स्पष्ट हो जाता है। हम में अनेक कमजोरियां हैं, किंतु यदि हम में ईमानदारी है तो उसकी चमक में ये सारी कमजोरियां और त्रुटियां छिप जाती हैं। लोग प्रायः कह देते हैं कि दुनिया का व्यवहार ईमानदार बने रहने से नहीं चल सकता। व्यवहार में तो ईमानदारी घाटे का सौदा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि व्यापार में साख उसी व्यापारी की बनी रहती है जो ईमानदार होता है। ऐसा व्यापारी अपनी चीजों के क्रय मूल्य का चिट्ठा अपने उपभोक्ताओं को निसंकोच दिखाकर उसमें ईमानदारी से अपना उचित मुनाफा जोड़कर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है और तब उसकी दुकान से वस्तु को खरीदने में किसी उपभोक्ता को कोई आपत्ति नहीं होती। बेईमान व्यापारी कुछ दिनों तक ही अपने खरीदारों को ठग सकता है, पर उसकी पोल खुलती ही है और तब चार दिनों की चांदनी अंतहीन अंधेरी रात बनकर सामने आती है। अपने अपने पेशों के प्रति ईमानदारी बनी रहे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्या वो डॉक्टर ईमानदार है जो अपने रोगी को उसके रोग की सही जानकारी नहीं देकर केवल उसे अपनी आमदनी का अच्छा जरिया समझता है? क्या आप उस योग्य शिक्षक को ईमानदार मानेंगे जो कक्षा में अपना विषय केवल इसलिए अच्छी तरह नहीं समझाता कि इसके कारण विद्यार्थी अलग से उससे ट्यूशन नहीं पढ़ सकेंगे? उस कुशल प्रशासक में भी ईमानदारी का अभाव है जो बड़ी चालाकी से जांच के फंदे से अपने को बचाते हुए काम उन्हीं का मुश्तैदी से पूरा करता है जिनसे उसे बड़ी रकम हाथ लगती है। कार्यालय में काम करने वाले वे सभी व्यक्ति ईमानदारी से हट जाते हैं जो झूठे बहाने बनाकर अपने नियत स्थान से हट हट कर इधर उधर घूमने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं, और उस नेता में भी ईमानदारी के दर्शन नहीं होते जो लोक लुभावने वायदे तो करता है पर उसे पूरा करने की सोचता तक नहीं। यदि कोई हमें बेईमान कह देता है तो इसे हम सहज ही नहीं झेल पाते, सुनकर तिलमिला जाते हैं, इसे सबसे बड़ी गाली मानते हैं, और है भी ये सबसे बड़ी गाली। पर ये गाली नहीं सुननी पड़े या ये गाली किसी प्रकार हम पर सही ना उतरे, इसके लिए हमें ईमानदारी को अपने चरित्र का स्वाभाविक गुण बनाना ही होगा। ईमानदार व्यक्ति का लोहा उसके दुश्मन भी मानने को बाध्य हो जाया करते हैं। अंग्रेजों की अनेक कूटनीतिक चालें राष्ट्रपिता गांधी की ईमानदारी का सामना करते ही प्रभावहीन हो जाया करती थी। गांधी जी के सत्य अहिंसा को उनकी ईमानदारी ही अमोघ अस्त्र बना देती थी। अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए हमें अपने क्षुद्र स्वार्थों, तात्कालिक लाभों और बड़े से बड़े प्रलोभनों को सहर्ष छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी नष्ट हो जाने पर सभी प्रकार के लाभ कौड़ी के तीन हो जाते हैं। ईमानदारी वो जल भरी नदी है जिसमें हमारे गुणों की नाव सहज भाव से चल सकती है, ये न रहे तो हमारे गुणों का जीवन में अग्रसर होना कठिन हो जाता है।
2: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, ईमानदारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भक्ति गीत। अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

अभी आपने सुना अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति गीत। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी,
1: एपिसोड 59।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कार्यक्रम विवरण के तहत अब आपको बता दें आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। विज्ञान वार्ता ये आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। गीत संगीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर। 8 बजे सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। सुबह 8:45 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

संध्या 4:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी। खेती बारी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। 6 बजे सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। संध्या 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर सुनेंगे विधानसभा समीक्षा हमारे रांची केंद्र से। 7:20 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। 7:30 पर आप सुनेंगे ऑल टाइम हिट्स। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानूनी सलाह। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:15 से आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। रात्रि 8:45 पर सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे News@9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 10:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और प्रतिदिन की तरह सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर।

ये थी आज केंद्र से प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की जानकारी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अभी आपने सुना मनोज तिवारी और साथियों की आवाज में ये भोजपुरी लोकगीत। अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा सिन्हा की आवाज में।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब सुनिए विज्ञान वार्ता के अंतर्गत पूर्व प्रसारित वार्ता पहाड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत। वार्ताकार हैं राजीव रंजन।
1: पहाड़ अपने आसपास के क्षेत्र की औसत ऊंचाई से भी ऊंचा ऐसा द्रव्यमान है जो अलग या जुड़ा हुआ हो सकता है। इसकी पहचान इसकी चोटियों से होती है। इस तरह के सबसे छोटी यूनिट को टीला या हिलोक कहते हैं। द्रव्यमान की काफी बड़ी और ऊंचाई वाले यूनिट को पहाड़ या श्रृंग कहते हैं। पहाड़ सिर्फ पृथ्वी की ऊपरी भाग पर ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी वलित होकर बनते हैं। इनकी ऊंचाई काफी किलोमीटर तक हो सकती है। इनके बनने के सिद्धांतानुसार इनको तीन तरह से बांटा गया है। पहला, पदार्थ के इकट्ठे होने से बना हुआ पहाड़, जैसे ज्वालामुखी पदार्थों के किसी जगह पर इकट्ठा हो जाने से जो पदार्थ का ढेर बनता है उसे पदार्थ से बना पहाड़ कहते हैं। रेतों के इकट्ठे होने और धीरे धीरे पहाड़ के रूप में जम जाने से भी इस तरह का पहाड़ बनता है। दूसरा, पदार्थ के बचे रह जाने से विशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन पहाड़ बनते हैं। इनमें विभिन्न तरह की शक्तियां और सहन क्षमता होती है। तीसरा, धरती के अंदर की संरचना के कारण टेक्टोनिक पहाड़ बनती है। ये तीन तरह की होती है, वलित पहाड़ यानी फोल्ड माउंटेन, फाउल्ट पहाड़ यानी ब्लॉक माउंटेन, गुंबदाकार पहाड़ यानी डोम माउंटेन। पर्वत निर्माण के लिए आवश्यक दिशाएं निम्नलिखित हैं, दो कठोर स्थिर भूखंड का होना, इसके बीच में भू अभिनति का होना जिसमें पदार्थ भूखंडों की क्षयात्मक शक्तियां काट काट कर जमा होती हैं और तली पर निरंतर नीचे धंसती रहती हैं। बीच के मध्य में पिंड का होना जिनका प्रभाव मोड़ा जा सकता हो। पर्वतों की उत्पत्ति, भूपृष्ठ पर विभिन्न प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न कालों में विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के योग से हुआ है। इनके उत्पत्ति का मूल कारण यही है कि पटल विरूपण यानी डायस्ट्रोपिक शक्तियां। ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्दार से हुई है, परंतु अन्य सभी पर्वतों में भूगर्भिक शक्तियां का योगदान काफी रहा है। पृथ्वी पर संपीड़न यानी कॉम्प्रेशन एवं तनाव मूलक यानी टेंशनल गतिविधियां जब तक कार्यशील होती हैं तब भूपृष्ठ पर पर्वतों का निर्माण होता है। सभी विद्वान वलित मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति इन्हीं शक्तियों के क्रियाशील होने के फलस्वरूप मानते हैं। यद्यपि इन शक्तियों के प्रभाव एवं क्रियाशीलता पर विद्वान के कुछ मतभेद हैं। भूपृष्ठ में समस्त वलित पर्वतों को उनकी आयु के आधार पर दो भागों में रखा जा सकता है, टर्शरी युग से पूर्व बने प्राचीन वलित पर्वत एवं टर्शरी युग में बने नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वतों की विशेषता के आधार पर ही पर्वतों की उत्पत्ति संबंध परिकल्पनाएं एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इन वलित पर्वतों की प्रमुख विशेषताएं यह होती हैं कि ये अवसादी सेल से बने होते हैं। इनकी आकृति चापाकार होती है, प्रायः यह लंबाई में अधिक व चौड़ाई में कम पाई जाती है और इन पर्वतों की चट्टानों के मध्य समुद्री जीवाश्म मिलते हैं। नवीन वलित पर्वत सतत निर्माण

प्रक्रिया में हैं, इसलिए यहां भूकंप के झटके आते रहते हैं और इन नवीन पर्वतों में अभी भी उत्थान हो रहा है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर यह माना जाता है कि मोड़दार वलित पर्वतों का निर्माण लंबे संकरे उथल समुद्री भागों में हुआ है, जिन्हें विद्वानों ने भू अभिनति या भू सन्नति कहा है। भू सन्नति से तात्पर्य यह है कि स्थल के घिरे ऐसे समुद्र क्षेत्र जो उथले लंबे एवं संकरे हैं तथा जिनमें निरंतर अवसादों का निक्षेप होता रहता है। इन समुद्री क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं यह होती है कि अवसादों में भरे होने से इनकी तली में निरंतर घसाव होता रहता है। अवसादों के साथ इनका रूप व आकार बदलता रहता है। अवसाद धीरे धीरे दबे एवं भार से चट्टान के ऊपर ले लेते हैं। नीचे की ठोस चट्टानों की परत पर अवसादों का निक्षेप होता रहता है। इससे दबाव बढ़ता है तथा भूसन्नति की तली में अवलतन अर्थात नीचे की ओर अचानक या धीरे धीरे धसने लगता है। इस तरह यह कमी अवसादों में भरता नहीं है, अर्थात होम्स के अनुसार आद्य स्तर में चलने वाली संवहन तरंगे ठोस धरातल के नीचे जब विपरीत दिशा में मुड़ जाती है तब वह साथ में पदार्थों के अन्यत्र बहा ले जाती है, जिससे उसके ऊपर महासागरीय तली में निरंतर धसाल होता रहता है। ऐसे क्षेत्र में भू अन्नति का विकास होता है जो पर्वतों की उत्पत्ति का क्षेत्र बन जाते हैं। भू सन्नति में पर्वतों का निर्माण की तीन अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम अवस्था, इसे भू सन्नति अवस्था भी कहते हैं। इस समय भू सन्नति का निर्माण व अवसादों का निक्षेप होता है। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था को पर्वत निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में अवसादों के भार से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसे पुनः स्थापित करने के लिए आंतरिक शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं। अतः भू सन्नति के किनारे स्थित स्थल खंड में विस्थापन होता है, जिसे क्षैतिज दबाव पड़ने से भू सन्नति के अवसादों पर मोड़ पड़ जाता है एवं इनका उत्थान होने लगता है और इसी उत्थान को हम पर्वत या पहाड़ कहते हैं। तीसरी अवस्था, इसे विकास की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में भू सन्नति के अवसादों में पड़े मोड़ में बार बार उत्थान होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया बहुत लंबी एवं मंद गति से होती है, जिनका अनुभव हमें नहीं होता है। उत्थान के साथ बाह्य शक्तियां अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं तथा अपक्षय व अपरदन से पर्वतों में काट छाट कर प्रारंभ हो जाती है, जिससे इन्हें विभिन्न आकार प्राप्त होता है। अनाच्छादन से पर्वतों की ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगती है। कहीं अधिक निक्षेप व कहीं अधिक अपरदन में समस्थितिक संतुलन यानी आइसोलेटिक एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है। पुनः आंतरिक शक्तियां कार्यशील हो जाती हैं, जिससे पर्वतों की ऊंचाई पुनः बढ़ने लगती है। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया हजारों लाखों वर्षों तक चलती है, इसलिए हमें कहीं अत्यधिक ऊंचे नुकीले शिखर वाले पर्वत जैसे हिमालय, रॉकीज व एल्प्स मिलते हैं तो कहीं अरावली, वॉसेस, ओजेक, परशाना जैसे घर्षित पर्वत मिलते हैं। इसलिए इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। भू संचलन से उत्पन्न संकुचन के कारण पड़ी संकुड़ित पर्वतों का निर्माण हुआ है। इस मत के आधार पर कोबर ने भू अभिनीति सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके विद्वानों ने आंतरिक शक्तियों के कारण महाद्वीप के प्रवाह से उत्पन्न क्षैतिज गति व दबाव से पर्वतों का निर्माण का कारण माना है। इस आधार पर वेगनार, जॉली, हेम्स तथा डेली प्रमुख हैं। वर्तमान में पर्वत निर्माण को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से वैज्ञानिक व प्रमाणिक समझा जा सकता है। प्राचीन सभी सिद्धांत मत ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। पृथ्वी का ऊपरी आवरण प्लेटों द्वारा बना है जो लगभग 100 किलोमीटर मोटी है। यह स्थल मंडल एवं द्रवलता मंडल की 100 किलोमीटर कठोर व दृढ़ भूखंड है। भूपटल पर 7 बड़ी व 20 छोटी प्लेट अभी भी चिन्हित की गई हैं। ये एक दूसरे से सटी हुई हैं व निरंतर परिवर्तन करती रहती हैं तथा इनमें गति उत्पन्न होती है। प्लेट्स का घूर्णन यूलर के ज्यामिति सिद्धांत के आधार पर होता है। इसी आधार पर पर्वतों की उत्पत्ति का व्याख्या

0: प्लेट का भाग जब गहराई में पहुंचता है तो अधिक ताप से पिघल जाता है तथा इसके आयतन में विस्तार होता है, फलस्वरूप भूपृष्ठ के वलित अवसाद ऊपर उठ जाते हैं और पर्वत का निर्माण करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत, वार्ताकार थे राजीव रंजन। इसी के साथ कार्यक्रम विज्ञान वार्ता यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गीत संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए अभिजीत की आवाज में ये गीत।

अभी आपने सुना पंकज उदास की आवाज में ये गीत। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शिवजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह

0: भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सोल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5 बजे

0: 10 मिनट से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह मिलेगा कानूनी संरक्षण। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितता को लेकर आंदोलन जारी। छात्रों ने मौन जुलूस निकालकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का किया प्रयास। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित परीक्षा सुधार नीति जल्द तैयार करने की घोषणा की। कहा सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था करेगी सुनिश्चित। विधानसभा का मॉनसून सत्र तय समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, एक दूसरे को ठहराया जिम्मेवार। और मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4-5 दिनों तक बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। आज और कल कई जिलों में वज्रपात होने की चेतावनी जारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण मिलेगा जो वर्तमान में राष्ट्रगान को प्राप्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है। छात्र कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। इस बीच कल शाम आंदोलनकारी विद्यार्थियों ने मौन जुलूस निकाला। इसमें शामिल छात्रों ने पूरी तरह मौन रहकर अपनी बात रखने का प्रयास किया। पेशे एक रिपोर्ट।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी और प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही समेत कई नेता प्रदर्शन स्थल पहुंचे और छात्रों को समर्थन दिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन छात्रों को डराने का प्रयास कर रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य संभावित असामाजिक तत्वों की पहचान करना है। छात्रों ने हालांकि दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द मांगे पूरी करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सकता है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: वहीं देर रात जिला प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अनुरोध किया कि वे अपना विरोध जारी रखें लेकिन खाना भी खाएं ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े।
4: उन लोगों ने काफी अनुरोध किया है और उनके मन में किसी तरह का कोई संशय है वो भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अनशन छोड़ दे ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट स्टेप की तरफ सभी छात्र लोग ही सोचे, इसी के अनुसार हम लोग भी इस पे रोक देंगे।
2: जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं रद्द किए जाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। सफल अभ्यर्थी रांची स्थित ऑक्सीजन पार्क में उन्होंने धरना दिया और परीक्षा रद्द करने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि बिना जांच के पूरी परीक्षा रद्द करना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी और मेहनत पर सफलता हासिल की है। आजसु सुप्रीमो सुदेश महतो ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म और विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्रों से मिले और उनका हाल जाना। उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री को खुद उनके बीच आकर उनसे सीधे संवाद करना चाहिए।
5: पारदर्शिता परीक्षा और परिणाम के लिए और घटित घटनाओं की जांच करने के लेकर जो आंदोलन हो रहा है।

0: है, उस पर सरकार के पास इतना समय क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं आते? और शिक्षा मंत्री का दायित्व खुद मुख्यमंत्री के ऊपर है, शिक्षा मंत्री के रूप में सामने क्यों नहीं आते और इस प्रोटेस्ट को क्यों नहीं समाधान करते हैं? और इसका जवाब किसी और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को देना चाहिए।
1: सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि छात्रों के साथ अभियान के तहत अब तक झारखंड के 8,500 से अधिक युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अपने सुझाव भेजे हैं। सीएम ने कहा कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो। उन्होंने झारखंड के युवाओं से अपील की कि वे अपने सुझाव देना जारी रखें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: सावनी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
3: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
4: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
3: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मामले पर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन पूरी तरह बाधित रहा। सदन में न तो प्रश्नकाल चल सका और न ही शून्यकाल की सूचनाएं ली जा सकीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार टकराव के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री ने समय से पूर्व सत्र स्थगित किए जाने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए सदन की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही स्थगित कर दी गई।
5: बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई सरकार अब जनता के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है। उनको लगता है कि विधानसभा चलेगी, विरोधी दल के विधायक आवाज उठाएंगे, तो इस आवेश से वो बचना और उसका एक ही मात्र रास्ता उनको सुझा कि विधानसभा का सत्र अवसान कर दिया जाए।
1: राज्य सरकार ने अमृत 2.0 मिशन के तहत रांची शहर में सीवरेज परियोजना और जलाशयों के सौंदर्यीकरण से जुड़ी योजनाओं में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। रांची सीवरेज प्रबंधन परियोजना की लागत में कमी लाने और कुछ अन्य योजनाओं के पुनर्गठन के बाद बची राशि से तालाबों के पुनर्जीवन और पार्क विकसित किए जाएंगे। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कल नई दिल्ली में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येंद्र सिंह से मुलाकात कर चतरा के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। सांसद ने अमृत 2.0 योजना के तहत चतरा शहर में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की मांग रखी। मौसम विभाग ने झारखंड में आगामी 4-5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 और 13 को कई जिलों पर बारिश वज्रपात का ज्यादा असर रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने 14वीं जेपीएससी पीटी और 2 बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने की सीएम की सदन में घोषणा को पहले पन्ने पर प्रमुखता से दिया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची में दोपहर तक थमी रफ्तार, अन्य जिलों में मिला जुला

लेकर 200 कार्यकर्ता हिरासत में। प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर लिखा है, नहीं चला मॉनसून सत्र, होता रहा हंगामा, एक दिन पहले विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। दैनिक जागरण लिखता है, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष खियांगते पर बिनसिस से भी 2 करोड़ रुपए के सौदे का लगा आरोप। हिंदुस्तान ने सीआईडी की पूछताछ में जेपीएससी 11वीं 13वीं में भी आरोपी अभय तिवारी के लेन देन के आरोपों को स्वीकार करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह मिलेगा कानूनी संरक्षण। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितता को लेकर आंदोलन जारी। छात्रों ने मौन जुलूस निकालकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का किया प्रयास। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित परीक्षा सुधार नीति जल्द तैयार करने की घोषणा की। कहा, सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था करेगी सुनिश्चित। विधानसभा का मॉनसून सत्र तय समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेवार। और मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4-5 दिनों तक बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। आज और कल कई जिलों में वज्रपात होने की चेतावनी जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे, RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, बस थोड़ी ही देर में।

0: दिल धड़कने दो, ये था फिल्म का नाम। याशिता शर्मा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये था फिल्म का नाम। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत दिल चाहता है फिल्म से हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में गीत वजीर फिल्म से अभी आपने सुना। रोचक कोहली का संगीत था, गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इसे लिखा।

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत आप पीके फिल्म से सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रे का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा हवाई। अभी, भी, भी, भी, भी, भी, भी।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था, और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गईं और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला, और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था।

सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं, जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

0: इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।
1: मैं

फिल्म हिम्मतवाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

0: दोनों आँखें मारो तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए। वो दोनों आँखें मारो तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली। माना माना

0: लव।
1: मम्मा मिया
0: पम पम
1: मम्मा मिया
0: पम पम।
2: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।
1: मैं

0: मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।
1: सर!

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

0: जिसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गई। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: ये था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7

0: हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी सकारात्मक सोच है। जहां सोच अच्छी होगी, वहां रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। हर सुबह नई उम्मीद का पैगाम लाती है। मुस्कुराइए और अपने हर दिन को खास बनाइए।

12 अगस्त है तो आप सभी यह जानते ही हैं कि 12 अगस्त को पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और समाज में उनके योगदान का सम्मान करना है। दोस्तों, सन 1998 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित युवा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प पारित करके 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, पहली बार आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त 2000 को यह दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का काफी महत्व है। यह दिन युवाओं की बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक मंच देता है, साथ ही नीति निर्माण और सामाजिक बदलाव में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा भी देता है। यह दिवस वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में युवाओं की नेतृत्व क्षमता को भी रेखांकित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है विभिन्न संदर्भ, सामान्य आकांक्षाएं। दोस्तों, इस बारे में आगे भी बात करेंगे। अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें ताकि हमेशा स्वस्थ रहे और अपने काम को सही ढंग से पूरा कर सके। दोस्तों, आज 22 अगस्त है और आज सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, तो आज हम अपने कार्यक्रम में आपको एक वार्ता सुनवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। वार्ताकार हैं रवि रंजन, तो आइए सुनते हैं।
1: राष्ट्र का निर्माण, विकास और प्रगति किसी देश की युवाओं के योगदान पर निर्भर करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के लिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में युवाओं का विकास और उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं को समझना जरूरी है। युवाओं की समस्याओं के बारे में जानकर उनका समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि वह समाज के लिए आवाज उठा सके। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 पूरी दुनिया के युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और क्षमता का सम्मान करने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर है। हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिवस युवाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। यह दिवस युवाओं से जुड़े मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के ध्यान में लाता है और आज के वैश्विक समाज में भागीदारी के रूप में युवाओं की क्षमताओं का जश्न मनाता है। वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के युवाओं के बीच शांति, पारस्परिक सम्मान और लोगों के बीच समझ के आदर्शों को बढ़ावा देने पर घोषणा का समर्थन किया। अतः वर्ष 1965 से 1975 तक महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद दोनों ने युवाओं के क्षेत्र में 3 मूलभूत विषयों पर जोर दिया: भागीदारी, विकास और शांति। युवाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। वर्ष 1989 में महासभा ने संकल्प 34/151 के द्वारा वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष सहभागिता, विकास, शांति के रूप में नामित किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 1991 में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के विश्व युवा मंच के पहले सत्र के लिए एकत्रित युवाओं द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मंच ने सिफारिश की कि संयुक्त राष्ट्र युवा कोष को युवा संगठनों के साथ साझेदारी में समर्थन देने के लिए विशेष रूप से धन जुटाने और प्रचार उद्देश्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया जाए। वर्ष 1998 में पुर्तगाल सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आयोजित युवा मामलों के लिए उत्तरदायी विश्व मंत्रियों के सम्मेलन के पहले सत्र में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया। बाद में महासभा के 54वें सत्र ने युवाओं से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम नामक शीर्षक वाले अपने प्रस्ताव में वर्ष 1999 में इस सिफारिश का समर्थन किया और पहली बार 12 अगस्त 2000 को इसे मनाया गया। तब से हर वर्ष अलग अलग थीम के साथ यह दिवस मनाया जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाता है। बीते वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम सतत भविष्य के लिए युवा नेतृत्व रखा गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और नीति निर्माण में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है ताकि वे जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, तकनीकी नवाचार और समावेशी विकास जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान कर सके। यह दिवस युवाओं की वैश्विक पहचान को बढ़ावा देता है और उनके शिक्षा और कौशल विकास के अवसर पैदा करता है ताकि वे नीति निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करके सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव को अपने अंदर महसूस कर सके और परिवर्तन के लिए प्रेरणा प्राप्त कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवा नेतृत्व में वृद्धि करता है, सरकारी नीतियों में सुधार लाता है, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, सामाजिक मुद्दों पर युवाओं को जागरूक करने के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देने का भी काम करता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना है ताकि युवाओं की भूमिका और योगदान को विश्व स्तर पर सामने लाया जाए। युवा सशक्तिकरण करना है ताकि युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से मजबूत बनाया जा सके। समावेशिता को बढ़ावा देना है ताकि सभी वर्गों के युवाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाए। वैश्विक सहयोग को मजबूती प्रदान करता है ताकि विश्व के अलग अलग सरकारों, संस्थाओं और युवाओं के बीच साझेदारी बढ़ सके और इन सब के साथ ही साथ युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जैसे बेरोजगारी, डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन इत्यादि। वर्तमान सदी में युवा वर्ग मानव सभ्यता के ऐसे मुकाम पर खड़ा है जब मानव विकास गति करत जेट विमान की गति से भाग रहा है। यह तीव्र विकास गति जहां अनेकों उपलब्धियां, सुविधाएं और चमत्कार लेकर आ रही है, वही युवा वर्ग के लिए तीव्र गति से भागने की क्षमता पा लेने की चुनौती भी है, क्योंकि यदि युवा वर्ग इतना क्षमतावान है कि वह तेजी से हो रहे परिवर्तन को समझ सके, उसे अपना सके, नई खोजों, नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर अपनी कार्यशैली परिवर्तित कर सके, तो ही वह अपने जीवन को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न बना सकता है और विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। आज के वर्तमान भविष्य को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा की कड़ी चुनौतियों को स्वीकार करना ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी बन गई है। पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। अपने देश में 35 वर्ष की आयु तक के 65 करोड़ युवा हैं, अर्थात हमारे देश में अतः श्रम बल उपलब्ध है। आवश्यकता है आज हमारे देश की युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन कर देकर उन्हें देश की उन्नति में भागीदारी बनाने की, उनमें अच्छे संस्कार, उचित शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी

0: की विशेषज्ञ बनाने की और साथ ही साथ उन्हें बुरी आदतों जैसे नशा, जुआ, हिंसा इत्यादि से बचाने की, क्योंकि चरित्र निर्माण ही देश की, समाज की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। एक दुष्चरित्र युवा ना तो अपना भला कर सकता है और ना ही समाज का और ना ही देश का। देश के निर्माण एवं उन्नति के लिए और देश को विश्व के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए युवा वर्ग को ही मेधावी, श्रमशील, देशभक्त और समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होना होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जैसे मंच को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवा सशक्तिकरण, नेतृत्व और नैतिक जिम्मेदारी है, जो कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवा ही राष्ट्र की प्रगति की नींव होते हैं। उनका प्रसिद्ध संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, आज भी करोड़ों युवाओं को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि उनके जन्म दिवस के सम्मान में होता है। यह दिन उनके युवाओं को आत्मविश्वास, अनुशासन और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करने के योगदान को याद करता है। स्वामी विवेकानंद का यह दृष्टिकोण की शक्ति, ज्ञान और करुणा का संगम ही सच्चा युवा सशक्तिकरण है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उद्देश्यों से पूरी तरह मेल खाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक उत्साह नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है जो युवाओं को सशक्त, जागरूक और सक्रिय बनाकर एक सतत और समावेशी भविष्य की दिशा में अग्रसर करता है। यह समय है कि हम सभी मिलकर युवाओं की क्षमता को पहचानें और उन्हें नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ाएं।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। वार्ताकार थे।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, आजकल सभी काम बच्चे पढ़ाई भी डिजिटल से ही करते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, सभी से। लेकिन डिजिटल युग में संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ है तकनीक का उपयोग करते हुए अपने नैतिक मूल्यों, पारिवारिक मर्यादाओं और समाज के प्रति कर्तव्यों को जीवित रखना। दोस्तों, आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है, वही हमारे संस्कारों और सामाजिक ताने बाने के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। डिजिटल युग में आधुनिक तकनीक का उपयोग सावधानी पूर्वक और वास्तविक जीवन के रिश्ते में न पारिवारिक समय को प्राथमिकता दें। सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को बिना जांचे परखे कभी भी आगे नहीं बढ़ाएं। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दूसरों का हमेशा सम्मान करें, अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करें, लेकिन इससे किसी का भी नुकसान ना हो इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखें। कभी कभी घर में सभी लोग रहते हैं, लेकिन वे सभी अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, घर के लोगों को अनदेखा कर देते हैं और दूर के लोगों से वे अपना संपर्क स्थापित रखते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। ये फायदे की चीज है कि दूर के लोगों से संपर्क बना रहता है, बातें होती है, वीडियो कॉल पर हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, लेकिन जो पास है उनसे भी संबंध अच्छा बना रहे, उन्हें भी किसी तरह की ठेस न पहुंचे, उनका भी सम्मान हम करते रहें। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हम डिजिटल का उपयोग करें और अपने संस्कार को भी बनाए रखें।

दोस्तों, आज 12 अगस्त है तो जानते हैं आज का मौसम का हाल। तो कल भी धूप ही था तो आज भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिन में धूप रहने और रहेगा और साथ ही बादल भी छाए रहेंगे। लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान की बात करें तो आज का अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और

न्यूनतम है 23 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त का समय है 6:32 पर और कल सूर्योदय का समय है 5:27 पर। आर्द्रता की बात करें तो अधिकतम आर्द्रता है 88% और न्यूनतम है 70%।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब जानते हैं ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आज ही के दिन 1833 में अमेरिका के शिकागो शहर की स्थापना हुई थी। 1877 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने पहले फोनोग्राफ का मॉडल पूरा किया। इसी दिन खगोल शास्त्री असाफ हाल ने मंगल ग्रह के उपग्रह डिमोस की खोज की थी। 1919 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और महान भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ। 1981 में आज ही के दिन कंप्यूटर दिग्गज आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतारा था। आज ही के दिन चुन्नीलाल कालिदास मड़िया का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध गुजराती लेखक और नाटककार थे।

दोस्तों, अब नज़र डालते हैं अखबार की सुर्खियों पर। तो स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आज सदर अस्पताल में है 12 बजे से। मतदाता सूची को अद्यतन रखने में बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए मतदाता के पुनरीक्षण कार्य के लिए मंगलवार को प्रखंड सभागार में बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। योनेक्स सनराइज झारखंड राज्य जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप सेलेक्शन ट्रायल 2026 का आयोजन कर्जन ग्राउंड इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम के कृष्ण दुबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 खिताब जीते।

हाथियों के झुंड का उत्पात, फसलें रौंदी और बाउंड्री वॉल भी को भी तोड़ा। टाटीझरिया प्रखंड के डहरभंगा पंचायत अंतर्गत केसड़ा के क्षेत्र में यह घटना घटी है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: दोस्तों नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का रंग तरंग कार्यक्रम विशेष है। इस कार्यक्रम में आज हमने एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित किया है जिनके गाने सुनते ही आपके पांव थिरकने लगते हैं, होठ संग संग गुनगुनाने लगते हैं। तो अब आपको बता दें, वो हैं जाने माने गायक, संगीतकार, पियानो वादक अदनान सामी। तो आइए सुने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत।
1: बहुत बहुत स्वागत विविध भारती में अदनान जी। और मुझे ये बताएं कि इतना लंबा सफर म्यूजिक की दुनिया में तय करने के बाद भी जब कोई नया गाना रिलीज होता है, क्या चल रहा होता है आपके दिल में?
2: वही चल रहा होता है जो पहले दिन चला था। मैंने कि जिस तरह की बटरफ्लाईज या गुदगुदियां पेट में पहले दिन से थी, शुरू से
1: जी,
2: वो आज भी बरकरार है और आज भी उतनी शिद्दत के साथ होती है और नर्वसनेस होती है, बेचैनी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। और बस यही दुआ रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आए। अब तक लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस दुआ यह है कि मैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पे मैं ठीक तरह से उतरूं और उनको वो चीज़ें

0: दूं तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है। इसलिए जब मेरी नए गाने की जो वीडियो जब आप देख रहे थे, तो मैं जब आपकी आपके रिएक्शंस सुन रहा था, तो मैं उसी तरह से बेचैनी के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं पहली दफा कर रहा हूं। क्योंकि हर दफा जब आप कोई चीज करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई अलग सी चीज करें, कोशिश करते हैं कि नई चीज करें, और उसके तहत कुछ पता नहीं होता कि लोगों को जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि उनको वो चीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी।
1: जी
0: तो और जितना एक और एक्स्ट्रा चीज जो होती है, जो जो शुरुआत में नहीं होती, जब
1: जी
0: शुरुआत में आप जब काम शुरू करते हैं तो कोई आपका कोई पिछला गाना नहीं होता जिसमें लोग बोले कि नहीं, वो ज्यादा अच्छा था। वो पहला गाना जो होता है वो कहते हैं यार वाह क्या बात है, क्योंकि कोई पुराना गाना होता ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करें।
1: कंपेयर
0: लेकिन फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएं तो वो ये बहस शुरू हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये बड़ा अच्छा था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेकिन वो बात नहीं रही या फिर वो बोलते हैं यार वो पिछला गाना ज्यादा बेटर था, यू नो
1: तो खुद
0: व्हाटएवर।
1: से मुकाबला होता
0: हाँ फिर इंसान खुद से ज्यादा मुकाबला कर रहा होता है।
1: है जी
0: तो और क्या है कि एक तरफ से आप ये कहने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार वो उस वक्त का था, उसके साथ मत कंपेयर करो। लेकिन मैं समझता हूं लोगों के जज्बातों को भी कि क्योंकि नए गाने के ऊपर भी ये एक तरह की नाइंसाफी है, क्योंकि आप एक नए गाने को एक पुराने गाने जो आपके अंदर घुसा हुआ है
1: जी
0: पता नहीं कितने सालों से, जिसने वो एक मकाम बनाया हुआ है आपके पास, मेरे वो ओवरनाइट तो नहीं हुआ था।
1: जी
0: आज अगर जिस तरह से लोग तेरा चेहरा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जी वाह क्या गाना है, लेकिन उसको भी वक्त लगा था,
1: जी
0: उसको भी वक्त लगा था क्या कहते हैं लोगों के दिमाग में बैठने के लिए। उस वक्त जब तेरा चेहरा आया तो कुछ लोगों ने कहा हिंदी नहीं भीग भीगी रातों में ज्यादा बेहतर गाना था।
1: जी
0: तो मैंने कहा यार वो गाना जो है आपके अंदर आपके सिस्टम में सालों से बैठ गया है,
1: जी
0: ये नया गाना इसको थोड़ा वक्त तो दो। अच्छा फिर वक्त के साथ साथ कुछ गाने जो हैं वो ज्यादा मकबूल हो जाते हैं,
1: जी
0: कुछ गाने जो हैं वो फेड आउट हो जाते हैं, यू नो। अब जैसे कि एक मजे की बात ये कि मेरा गाना है नैन से नैन मिला, अच्छा जब वो रिलीज हुआ था तो किसी को समझ नहीं आई,
1: ओ
0: क्योंकि इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल
1: व्हाट यू डू नॉर्मली।
0: हाँ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कभी तो नजर मिलाओ, भीगी भीगी रातों में, तेरा चेहरा, मेरी याद रखना, एंड देन सडनली लिफ्ट करा दे
1: जी बारिश
0: बारिश, एंड देन सडनली नैन से नैन आ जाता है जहां पे वो क्लासिकल भी है बीच में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो शुरू शुरू में नहीं पसंद आया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इट बिकम अ काइंड ऑफ अ कल्ट सॉन्ग। वो बहुत पॉपुलर हो गए खासतौर पे डांस प्रोग्राम्स में एंड रियलिटी शोज में। तो वो कुछ गाने होते हैं जो बाद में अचानक उभर जाते हैं, और कुछ गाने जो होते हैं वो फेड आउट भी हो जाते हैं। तो
1: ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब थे लेकिन पब्लिक से उतना खास रिस्पॉन्स शुरुआत में नहीं मिला लेकिन आपके दिल के करीब आज भी है?
0: दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक नैन से नैन
1: जी,
0: क्योंकि नैन से नैन
1: ये तो बेशक।
0: हाँ मतलब कि नैन से नैन जब मैंने बनाया था
1: जी,
0: तो मैं उस गाने पे बहुत उस वक्त उम्मीदों के साथ में बैठा हुआ था कि ये गाना जो है ये एकदम लोगों को पसंद आएगा, और वो उस वक्त नहीं पसंद आया इतना, क्योंकि लोग जो गाने उससे पहले रिलीज हुए थे वो उसी एल्बम के, पहले तेरा चेहरा था, फिर मेरी याद रखना, फिर चैन मुझे आए ना गाना था, अच्छा उसके बाद फिर नैन से नैन आया। तो क्या था कि वो एकदम अलग

0: वो वहां उन जॉनर्स में वो फिट नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब था। तो फिर बाद में तो मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो होना चाहिए, यू नो इसमें राग दरबारी है, ये तो बड़े करीब है हमारे हमारे म्यूजिक में, राग दरबारी के तकरीबन सारे गाने सुपरहिट रहते हैं, राग ही ऐसा है। तो आई वाज क्वाइट यू नो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, यू नो। तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पर ठीक है, यू नो आई मीन जो हुक्म जनता का उसको तो सारा आंखों पे बंदा करता है, यू नो। तो कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि इट वाज सडनली गेटिंग रिवाइव्ड,
1: राइट,
0: एंड इट वाज गेटिंग रिवाइव्ड फ्रॉम द रियलिटी शोज, क्योंकि उसके अंदर रिदम जो था ना वो बहुत यूनिक किस्म का रिदम था
1: जी।
0: तो वो जो डांसर्स थे उनको बेहद पसंद आ रहा था, क्योंकि वो इट लेंट इटसेल्फ टू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग डांस।
1: वाओ।
0: तो वहां से अचानक वो गाना जो था
1: वापस आ गया,
0: वो वापस आया और फिर इट बिकेम वेरी पॉपुलर,
1: बिल्कुल,
0: सो मच सो के फिर, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात, क्योंकि एक होता ना एक वो जो एक निग्लेक्टेड बच्चा होता है वो अचानक जो है उसको अपनी जगह मिल रही है, यू नो। तो देन आई हैड टू देन आल्सो इंक्लूडेड इनटू माय कॉन्सर्ट्स,
1: yes,
0: क्योंकि अक्सर इंसान कॉन्सर्ट्स जो है वो उन्हीं गानों को शामिल करता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं
1: जी,
0: यू नो। तो उसकी अहमियत ऐसी हो गई थी फिर, जिसकी वजह से वो फिर पॉपुलर हुआ।
1: जब आप आशा जी के साथ काम कर रहे थे
0: जी,
1: तो वो किस तरह की आपकी कैफियत थी और उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ शेयर कीजिएगा?
0: देखिए, जैसे मैंने अक्सर ये जिक्र किया है, आशा जी का और मेरा जो रिश्ता था वो एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता था। एक तरफ से वो मेरी माँ का दर्जा था।
1: इसकी शुरुआत कैसे हुई?
0: सबसे पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 10-11 साल की उम्र में। आई वॉज अ किड इन लंदन, और वो और पंचम दा दोनों आए हुए थे, उनका कॉन्सर्ट था रॉयल आल्बर्ट हॉल में। तो जो रिकॉर्ड भी हुआ है
1: जी,
0: उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो मैं उस कॉन्सर्ट में था, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्सर्ट के वो हमारे फैमिली के जानने वाले थे। तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि देखो हम उनसे मिलना चाहते हैं, और उनको पता था कि बेटा जो है वो बहुत म्यूजिक में है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने एक मुलाकात करवाई लंदन में, क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद दे वर जस्ट स्पेंडिंग अ फ्यू डेज एज अ हॉलीडे। तो मैं वहां पे गया अपनी वालदा के साथ, तो मैं म्यूजिक 5 साल की उम्र से मैं बजा रहा था। तो लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बजाता था, तो मैं अपनी कैसेट लेके गया हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरी पियानो पे। तो आशा जी मिली, तो आशा जी को मैंने अपनी पोर्टेबल मशीन पे मैंने उनको म्यूजिक सुनाया, उन्हें बेहद पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि एक सेकेंड ठहरो,
1: पंचम
0: ये तो मैं पंचम को मैं बुलाती हूँ, ये तुमको पंचम को भी सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है। आई यूज टू लव आरी बर्मन, बल्कि बचपन में हम जब लिस्बन में रहते थे तो वहां पे हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं बस ये ढूंढ रहा होता था, लोग अक्सर हीरोज हीरोइंस को देख रहे होते थे, मैं ढूंढता था कि बर्मन नाम कहाँ पे है।
1: वाह वाह वाह,
0: अब बर्मन नाम है तो बस ठीक है, मैं देखूंगा फिल्म। और वो यकीनन, चाहे वो मुझे अभी तक याद है, वहां पे मैंने अभिमान देखी, मैंने यादव की बारात देखी, दीवार देखी, शोले देखी, वहीं पे सब बर्मन। लेकिन मुझे एक उलझन थी कि यार ये SD और RD क्या है।
1: हाँ, बिल्कुल
0: मुझे समझ नहीं आती, तो ना ही मुझे कोई बताए
1: जी
0: बर्मन है ना, बस ठीक है मैं देखूंगा। बाद में पता चला कि बाप बेटे, अब समझ भी आता है कि भाई उनका जॉनर जो था, जो मिठास थी वो उसमें एक कॉमन DNA था।
1: यस,
0: यू नो, सो यू कुड टेल। सो एनीहाउ, पंचम दा आए और मैंने उनको कैसेट सुनाई। अच्छा, उनका रिएक्शन जो था वो बड़े मजेदार था।
1: हाँ।
0: उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा शक्की मिजाज का था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तुमने बजाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बजाया। अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा अगर क्या मतलब है
1: जी?
0: अगर से मतलब कि अच्छा, मैं लियो की शान के खिलाफ है कि अगर आप उसकी गुस्ताखी कर दे या फिर शक करे उसकी बात के।
1: जी, जी।
0: मैं भी फिर जिद में, मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बजाया। Then he would turn around and say, हाँ हाँ अगर तुमने बजाया है तो वो बहुत अच्छा बजाया है। मैंने कहा जी मैंने ही बजाया है। अच्छा, वो भी उनके अंदर भी थोड़ा सा बचपना था। He went into the room next door and he brought out a portable Casio.
1: Just to test you.
0: हाँ, मतलब उस जमाने में कैसियोज जो थे ना, उनके सबसे नए मैंने कहा नहीं नहीं

0: निकले थे कैसियो ब्रांड से विच वर पोर्टेबल. बाद में दुनिया में बेतहाशा पोर्टेबल आ गए थे, लेकिन कैसियो वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट स्टार्टेड दीज पोर्टेबल वन. अच्छा, ही ब्रॉट आउट अ कैसियो, बजा के दिखाओ.
1: ओ हो हो हो.
0: तो मैंने बजा दिया. ही लुक्ड एट मी, ही सर हाँ तुम नहीं बजाया.
1: क्या बहुत
0: अच्छा बजाया,
1: क्या बात.
0: यू नो एंड दैट्स व्हेन ही वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज मी हु हैड प्लेड इट, यू नो.
1: मतलब वो इतना नायाब था.
0: जी जी जी,
1: अनबिलीवेबल हो गया था.
0: हाँ,
1: द ग्रेट पंचम के लिए बिलीव करना कि ये बच्चा जो है
0: बच्चे
1: वो इतना शानदार बजा सकता.
0: हाँ, करेक्ट.
1: तो बचपन से आप जादू ही रहे.
0: तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है आशा जी के अल्फाज कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह से मेहनत करो तो शायद एक दिन तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनाओ.
1: वाह.
0: तो मैंने कहा यार मतलब कि क्या बात है, यू नो. आई वाज लाइक वाओ, यू नो, दी आशा भोसले सेइंग दिस टू मी. और देखो देखो, प्रोफेसीज भी कभी कभी कैसे निकलती हैं कि मेरा पहला रिकॉर्ड और मेरा पहला रिलीज इंडिया में वो उनके साथ था.
1: जी,
0: यू नो, आई मीन शी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट. नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट.
1: यस,
0: दिस वाज फेट, यू नो, एंड दिस वाज डेस्टिनी, एंड इट हैपेंड. एंड वो खुद इस बात पे हैरान है कि देखो याद है मैंने तुम्हें कहा था. एंड मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है. एंड आई सेड देखो ऊपर वाले ने किस तरह से हमको इकट्ठे किया कि आपने ये बात बोली और जब मेरा पहला रिलीज हुआ तो आप ही के साथ हुआ. तो मैंने कहा ये ऊपर वाला ही चीजें तय करता है.
1: कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हुए होंगे इस पूरे एल्बम को बनाने के दौरान, क्योंकि आशा जी वाज वेरी जॉली एज वेल एज वो बहुत मेहनत करती थी.
0: मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम पहले दिन जा रहे थे स्टूडियो लंदन में, तो मुझे अभी तक आशा जी यूज्ड टू बी अ वेरी मतलब कि बहुत जॉली मिजाज की थी, बहुत हंसमुख थी और बहुत बबली थी. अपने एटीट्यूड उनका बड़ा ज़बरदस्त था और एंड शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती थी अलग अलग चीज़ों पे, एंड शी वॉज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ. तो जिस सुबह मैंने उनको पिक किया उनके होटल से, और हमारा रास्ता जो था स्टूडियो का तकरीबन 40-50 मिनट का था. अब वो अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट, हम दोनों पीछे बैठे हुए थे और वो बस क्या कहते गाड़ी में बाहर बस देख रही थी और चुप थी.
1: आपके लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया.
0: अच्छा, अब मैं यू नो मैं तो एकदम अननर्व हो गया ना.
1: जी,
0: मैं बहुत ज्यादा अननर्व हो गया. मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बात बोल दी, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, इतनी क्वाइट क्यों है. क्योंकि वो कभी भी इस तरह से मैंने उनको कभी इस तरह से इतना चुप नहीं देखा. तो देयर वाज दिस वेरी अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द कार. अच्छा, मैंने कोशिश की थोड़ी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन, यू नो, ठीक ठाक सोई आप कोई चीज की, हाँ सब ठीक ठाक. देन शी वुड स्टॉप क्वाइट. मैं कुछ और मैं बात बोलूं तो एक एक अल्फाज के साथ जवाब दे दिया. ये नहीं कि कोई गुस्से में या कुछ नहीं, बस क्वाइट. थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा हिम्मत करके मैंने आशा जी से पूछा, मैंने कहा आशा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. तो शी सेड मैं सोच रही हूँ. मैंने कहा किस बात की सोच रही हैं आप. सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं. मैंने कहा क्या कर पाएंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई. सोच रही हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग ठीक तरह से कर पाऊंगी कि नहीं. मैंने कहा आशा जी आप ये कह रही हैं, मुझे तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए. क्योंकि अगर आप दी आशा भोसले इज स्केर्ड और फियरफुल, इफ यू आर स्केर्ड कि आपसे रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं फिर किधर जाऊं.
1: जी जी,
0: मैं तो बच्चा हूं आपके सामने. मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको थोड़ा सा, मैं कहा आशा जी फॉर गॉड सेक, यू नो, एंड ऑल दैट. नहीं नहीं, समय तुम्हें नहीं पता, यू नो, जब भी हम नया काम पकड़ते हैं तो ये फीलिंग होती है.
1: जी,
0: तो मैंने कहा अच्छा, यू नो, मैं चुप, मैं क्या बोल सकता हूँ. तो अच्छा, उनकी बेटी वर्षा
1: जी
0: वो भी उनके साथ आई हुई थी लंदन.
1: जी,
0: तो जब हम पहुंचे स्टूडियो में, मैंने वर्षा को फोन किया. अच्छा, वर्षा के साथ मेरी बड़ी बहुत क्लोजनेस, बहुत दोस्ती थी. शी वाज अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हर सोल. मैंने वर्षा को फोन किया, मैंने कहा वर्षा मुझे एक चीज बताओ, ये आशा जी शी इज वेरी क्वाइट. मैंने पूरा बताया. अच्छा, वर्षा यूज्ड टू बी अ रियल चिल्ड आउट पर्सन, यू नो. आई इज लाइक दैट ओनली. मैंने कहा क्या मतलब. वो डोंट वरी अबाउट इट, वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले उनका यही हाल होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है. और ये करके उसने ठक कर दी. मैंने कहा यार ये ऐसी कैसी हो सकता है. श्योर इनफ, जैसे वो माइक्रोफोन के सामने गई,
1: रूप बदल गया.
0: मतलब कि इट वाज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट.
1: वाओ
0: शी सडनली बिकेम अ

0: जायंट,
1: क्या बात, मेटामॉर्फोसिस
0: सामने वो मेटामॉर्फोसिस लिटरली जैसे होता है ना
1: जी,
0: माय गॉड, उसके बाद जो एटीट्यूड था ना कि यू नो थ्रो एनीथिंग एट मी आई कैन टेक इट, बल्कि मैं इसको लेके इसको चबा के इसको 10 और तरीकों से, इट वॉज लाइक दैट, इट वॉज लाइक मैं उनको एक लाइन देता था, वो कहती मैं इस तरह भी गा लेती हूँ, मैं इस तरह भी गाती हूँ, इस तरह भी गाती हूँ, मैं कह रही यार मुझे सारे पसंद है, मैं क्या करूँ, आई वॉज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, जिसे वो होता ना लालच नहीं हो जाती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, शी कुड इंटरप्रेट मेलोडी इन सो मेनी डिफरेंट वेज दैट शी वुड स्पॉइल यू फॉर चॉइस,
1: क्या बात,
0: एंड शी वुड स्पॉइल द म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि बाद में आप किसी और के साथ काम करो ना, क्योंकि बस यही है
1: तो आपको याद आए कि चॉइस,
0: ऑफकोर्स मैंने कहा यार मतलब इन्होंने आदत खराब कर दी, हाँ कभी कभी दूसरों के साथ कई दफा काम करके मैंने कहा यार मुझे एक और ऑप्शन है, बस यही है तो यू नो आई मीन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ऑफ कोर्स अदर सिंगर्स आर ग्रेट, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट शी वाज अ फिनोमेना,
1: जी
0: शी वाज अ फिनोमेना, एंड दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले, यू नो जैसे लता जी ने कहा, लता जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली, उन्होंने कहा जो गाने मैं गा सकती हूँ वो आशा गा सकती है, लेकिन जो गाने आशा गा सकती है वो मैं भी नहीं गा सकती,
1: वाह,
0: आई मीन दैट कुड,
1: कितनी खूबसूरत,
0: कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात
1: जी,
0: और कौन इंसान कह रहा है, लता मंगेशकर, दैट्स अ ह्यूज थिंग, एंड दैट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट्स शी कुड हैव गॉटन फ्रॉम एनीवन
1: जी,
0: तो दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले, लेकिन मजे की बात, ये तो एक किस्सा था, एक और बड़े मजे का किस्सा जो था
1: जी
0: वो इसी प्रोजेक्ट में था, अब हम लंदन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हमारा कल्चर और ब्रिटिश कल्चर या यूरोपियन कल्चर जो है वेस्ट का वो बड़ा डिफरेंट है, इन द सेंस कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, जिस तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हम या तो जी लगा देते हैं, या फिर अगर हमारे माँ बाप के अगर दोस्त हों तो वो ऑटोमेटिकली अंकल बन जाते हैं या आंटी बन जाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, तो हम इस तरह की तहजीब जो है हमारे कल्चर में बहुत अंदर है कि हम सबको बहुत इज्जत प्यार के साथ, इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जो है वो अगर नाम से पुकारते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, बस वहां का ट्रेडिशन अलग है
1: जी,
0: यू नो, तो अच्छा अब क्या था कि मैं तो जानता हूं कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, अब आशा जी हैं और या फिर आशा आंटी हैं या आशा ताई हैं या जो भी जो हमारे अब जैसे मेरी बेटी मदीना 9 साल की है वो आशा जी को आशा दादी बुलाती है,
1: वाह,
0: यू नो,
1: क्या प्यारी बात,
0: तो हाँ तो द पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर एक चीज होती है, अब अगर मेरे कोई कॉलीग है तो वो उनको अंकल बुलाएगी या काका बुलाएगी या व्हाटएवर, तो ये चीजें हमने सिखाई हमारे ट्रेडिशन में है, व्हिच आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल थिंग
1: जी।
0: अच्छा अब क्या हुआ कि पहली दफा आशा जी मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही है लंदन में, तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार आशा जी कम से कम ओल्ड स्कूल ऑल्सो, मुझे बाद में पता चला था शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल आउट देयर, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त, तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये सारे बंदे जो हैं जो इंजीनियर्स और ये जो सारे जो काम करते हैं तो सब गोरे, तो ये तो बिल्कुल फट से क्या कहते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं बेतकल्फी के साथ, अब उसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है, लेकिन मैंने कहा अगर आशा जी माइंड कर जाए तो फिर तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ अगले हफ्ते एक मतलब पूरे हफ्ता भर रिकॉर्डिंग करनी है, तो अगर उनका मूड पहले दिन ही खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने पूछा है अच्छा मुझे सैमी बुलाते थे क्योंकि अदनान उस वक्त जरा मुश्किल था, ऑलराइट सैमी व्हाट्स योर नेम, आई सेड लिसन शी इज अ लेजेंड, या आई नो आई मीन यू टोल्ड अस बिफोर शी इज अ लेजेंड या बट व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा कि यार अगर मैं उनको बोलूंगा आशा भोसले हे आशा, यू नो मैंने कहा यार ये तो
1: दिक्कत हो जाएगी,
0: ये जो दिक्कत हो जाएगी अगर वो माइंड करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, तो मैंने कहा हर नेम इज आशा जी,
1: वाओ,
0: तो ही सेड बट व्हाट्स द फर्स्ट फुल नेम, आई सेड हर नेम इज आशा जी भोसले,
1: व्हाट अ ट्रिक,
0: हां तो उन्होंने कहा आशा जी भोसले, आई सेड या ओके ओके फाइन, और वही हुआ, नाम फर्स्ट नेम पे ही बुलाना था ना उन्हें, तो जैसे आशा जी एंटर हुई क्या कहते हैं स्टूडियो के अंदर, हाय आशा जी इट्स एन ऑनर टू मीट यू, अच्छा आशा जी जो थी बड़ी इंप्रेस्ड हुई
1: जी, और
0: मेरी तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा को कितना अच्छा जानते हैं मैंने कहा बस देख लो आशा जी आशा जी कैन यू जस्ट से दैट वन मोर टाइम अ लिटिल लाउडर प्लीज, कितने तहजीब वाले हैं ना, वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सब आई विल मेक इंडियन टी फॉर यू, तो शी वेंट इन टू द किचन, शी मेड कड़क चाय, टिपिकल कड़क चाय सबके लिए, और वहां से शुरुआत हुई हमारी रिकॉर्डिंग की. एंड बाद में बड़े सालों बाद मैंने फिर आशा जी को वो किस्सा सुनाया. मैंने कहा पता कि वो कैसे हुआ. बड़े शैतान हो तुम, मुझे बताया नहीं इस तरह.

0: मैंने कहा she said, and she herself said to me,
1: जी
0: सामी इस तरह से मैं जानती हूँ उनका कल्चर, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, मैं जानती हूँ कि वो इस तरह से, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था ना
1: जी,
0: तो मैं तो अब चाह रहा था कि आप किसी भी तरीके से ऑफेंड हो जाएं किसी तरीके से, कि होता है कि भाई कभी कभी कुछ लोग जो है वो बुरा मान जाते हैं, तो चीज़ें नहीं नहीं मैं इस तरह की चीज़ों पर बुरा नहीं मानता, मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जो ऐसी ऐसी इज्जत करते हैं लेकिन पीछे से छुरा मार देते हैं, तो नाम से कुछ नहीं होता, नियत से होता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो सच बात भी है, तो बहुत तरह की बहुत सारी चीजें थी, apart from music, there were many, many things that I learned from her. जैसे मैंने कहा ना कि वो एक माँ का दर्जा रखती थी मेरे दिल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ माइक्रोफोन के सामने आने की जो जो टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया.
1: क्या
0: बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे सिखाई जो अक्सर बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कहावतें थी वो बहुत अनमोल थी और आज भी मेरे दिल में बसती हैं, और यू नो बहुत कुछ सीखा, और बहुत प्यार वाली थी. शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन.
1: यस,
0: जो थी वो दिल के सामने और शक्ल पे दिखता था उनका. मुझसे लड़ती भी थी.
1: अच्छा.
0: ओ एंड हाउ, मतलब कि वो मेरे साथ लड़ती भी थी, अगर मैं लेट्स से 2-4 महीने अगर मैंने फोन ना किया किसी वजह से या विजिट नहीं किया, तो मतलब कि बरस जाती थी.
1: ओ.
0: अच्छा वक्त आया, अच्छा आगे, अच्छा अब आज कैसे याद आई, फोन गलती से तो नहीं लगा दिया, मतलब सार्कैज़म टू द कोर, एंड देन शी वुड गिव इट टू मी एंड आई वुड जस्ट सिट देयर से अच्छा अच्छा जी आप बोलिए जो आपने बोलना है. अच्छा फिर मैं जब उन्होंने कहीं पे पॉज किया तो मैंने कहा हो गया. हाँ हो गया, मैं ठीक हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है.
1: जिनसे वो प्यार करती थी उनके लिए खाना भी बनाती थी.
0: ऑफ कोर्स, एंड यू नो शी वुड, वो ताना भी मुझे देती थी इस बात का, तुम भूल गया ना, रात के 12 बजे कभी कभी आते थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए पराठे और ऑमलेट बना के तुम्हें देती थी. एंड दैट इज अ फैक्ट. She did.
1: क्या बात है.
0: You know, so you know, she would love to, like I said, she was motherly, you know, and उनके साथ कोई तकलीफ नहीं था
1: जी.
0: उनके साथ वही अपनापन था, और वो भी कई दफा, she used to also be awake till late, तो कभी कभी मैं अगर उस साइड पे होता था तो मैं अचानक आ जाता था, तो सबसे पहले पूछ खाना खाया तुमने कि नहीं, मैंने कहा नहीं खाया, अच्छा बैठो. Then, जो भी उस वक्त किचन में था अगर और कुछ नहीं तो वो ऑमलेट और पराठा बना देती थी. यू नो लाइक आई सेड शी वाज वेरी मदरली, तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था
1: जी. कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है.

0: जब आप म्यूजिक देते हैं उसमें भी वो प्यार और वो शिद्दत नजर आती है। खासतौर पर मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका जिक्र लोग कम करते हैं, लकी नो टाइम फॉल आउट।
1: जी,
0: जितने
1: जी.
0: मीठे और प्यारे गाने आपने बनाए हैं।
1: थैंक यू।
0: आपने और क्यों नहीं किया ऐसा काम?
1: इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ,
0: लगता नहीं आपको देख के।
1: मेरा मतलब है कहने का कि अगर आप मेरा डिस्कोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको
0: देर देर से आते हैं।
1: हाँ, और दूसरी चीज ये कि मेरे में आपको ज्यादा इफ यू कंपेयर इट टू अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिक कंपोजर्स इन हिंदुस्तान, मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना उनका है। लेकिन एक चीज जो आपको नजर आएगी, यू विल फाइंड अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क ऑफ अलग अलग किस्म के जॉनर्स। मैंने शुरुआत की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की एज अ पियानिस्ट, एज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पियानिस्ट।
0: वहां भी जाकिर भाई जैसे लोगों के साथ बजाया।
1: जी, तो मेरा सबसे पहला प्यार जो था वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था और है। अच्छा, हकीकत ये है मेरे होते ना कि बचपन की जो एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उसमें सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था।
0: ओके,
1: आई वॉन्टेड टू जस्ट बी अ पियानिस्ट एंड अ कंपोजर।
0: जी,
1: गायकी जो थी वो मेरे अंदर कभी वो ख्वाहिश नहीं थी। गाना मैं इसलिए मैंने गाना शुरू किया क्योंकि हर म्यूजिशियन जो है गुनगुनाता तो है ही। तो क्या होता था, मैं जब कोई ट्यून कंपोज करता था तो उसका डेमो बनाता था।
0: जी,
1: अच्छा, डेमो में मैं खुद ही गा देता था,
0: जाहिर है।
1: फिर बैठ के मैं फैंटेसाइज करता था, क्या किशोर दा अगर गाएंगे तो क्या बात होगी, या रफी साहब अगर गाए तो क्या बात होगी। अच्छा, रफी साहब या किशोर दा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या मैं जिधर भी बैठा हूँ, मैड्रिड बैठा हूँ, अब वहाँ पे मेरा क्या एक्सेस है उनके साथ। और फिर उसके थोड़ी देर कुछ अरसे बाद तो उन सब का भी इंतकाल हो गया। तो मैं एक्चुअली गायकी में इसलिए पढ़ा क्यों, मैं अपने गाने इसलिए मैंने गाने शुरू की क्योंकि और कोई गाता नहीं था। तो मजबूरी के तहत मैंने खुद गाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो मैं कहता था कि यार ये गाना जो है ना, ये अगर फलाना सिंगर गा, तो थोड़े अरसे बाद लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार लेकिन तुम्हारी आवाज में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो अपनी आवाज में रखो।
0: जी,
1: तो जब मुझे ऐसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, सवाई मैंने कि मेरी वालदा के अलावा, क्योंकि माँ के लिए तो सबकी आवाजें अच्छी होती है ना, अपने बच्चों की हर चीज अच्छी होती है। तो लेकिन जब क्या कहते हैं दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा। तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया। तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, और फिर फिल्म म्यूजिक भी है। तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे। यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स, इंस्ट्रूमेंटल हो
0: ऑफ कोर्स
1: यू नो एंड ऑल दैट। तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एज मच।
0: यस।

0: मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया, लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की. मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है.
1: जी,
0: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप. अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं, वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हूं, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी. तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया, और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं. तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच्ड टू एवरीथिंग दैट आई डू. आई डोंट माइंड कि मैंने

0: गड़बड़ है
1: जी।
0: अच्छा, उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे
1: बहुत।
0: हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया और उन्होंने गानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया और उस प्रमोशन की वजह से सीडीज और कैसेट्स जो थी वो
1: खूब चले।
0: अच्छा, जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू वेल
1: जी।
0: ठीक है, इट डिडंट डू वेल फॉर व्हाटएवर रीजन, इट वेंट डाउन immediately, it affected the
1: sales of the music.
0: Sales of the music, but by that time, वो पार हो चुके थे।
1: जी जी जी।
0: They were already declared a super hit because the people loved the songs. ठीक है ना? तो अब that was one of those very few examples in history, musical history, कह लो whatever, कि जहाँ पर the movie didn't do well, but the soundtrack did really really well.
1: Yes. लोग आज भी याद करते
0: हैं। हाँ, लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि कभी-कभी ऐसा भी होता है। अब जैसे कि पंचम दा का शोले
1: जी,
0: he got the maximum amount of awards and sales because of Shole. But frankly speaking, even he used to acknowledge that Shole is not my best piece of work.
1: Of course, that's the truth.
0: Yeah, and that's the truth. And he used to also say it.
1: जी,
0: but because the film was such a colossal hit, that it automatically helped
1: everything. Yeah.
0: अच्छा, अगर आपको याद हो लगान पिक्चर, अगर आपको याद हो जब वो शुरू में उसका साउंडट्रैक जब रिलीज हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रही थी उसका।
1: जी।
0: And it was, you know, it was people were confused कि यार किस तरह के गाने हैं, किस तरह के, and they were not working. The movie released and it became a colossal hit of its time, and overnight the music suddenly became a sensation because of the visual and the story line attached to the songs. But they were very situational songs, so now people understood those songs. They understood the context,
1: right?
0: And suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, I loved the songs even before the movie was released.
1: जी,
0: क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए।
1: वो एक separate entity.
0: वो एक separate, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ। मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है।
1: जी,
0: गाने जो है वो रहते हैं क्योंकि they are very easy. You can listen to a song anywhere, na?
1: Right.
0: You can listen to a song in your headphones, in your, on your phone, in your car, everywhere. You can't watch a film everywhere. Of course, today you have the mobile phones and all
1: still,
0: that. Lekin phir bhi, you don't have the time to watch a film all the time. But music stays with you. Music always stays with you, and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational. It should help the film's narrative. Lekin it should stand on its own two feet.
1: Right. Very.
0: अब जैसे कुछ गाने ऐसे हैं जो बड़े खूबसूरत बने हुए होते हैं, लेकिन उसकी picturization इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती. कभी कभी बंदा कहता है यार, काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता.
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास. मुसाफिर हूँ यारो
1: जी,
0: मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुनो, मैंने सडनली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है. एंड इट वाज ओके, यू नो व्हाट आई मीन. बट यू नो, सॉन्ग्स अल्टीमेटली आउटलिव द मूवी. सो देन यू नीड, द सॉन्ग नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they still out, even though you would not under, like, for example, a song like Julie. Ab Julie ka naam kyun hai? Kyunki film ka naam Julie tha. उसका मेन कैरेक्टर जूली था. लेकिन आज भी आप अगर सुनो, कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है?
1: जी,
0: भूल गया सब कुछ, क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है.
1: एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात कर रहे हैं.
0: एग्जैक्टली, एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड रिलेवेंट.
1: रिलीज इन 1975.
0: वाओ, देयर यू गो. तो देखिए, बात ये है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट, यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे, जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन द रिकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे
1: जी
0: कंपाइलेशंस में और इस तरह से. तो वो गाने जो थे, यू नो, बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे. और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन. अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जाओ.
1: जी, ये आज के जमाने.
0: हाँ, आज के जमाने. तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ दो चार दफा हुआ जहां पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ. तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था. तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड यू नो व्हाट आई विल बी वेरी वेरी
1: चूजी

0: choosy of whom I want to work with when it comes to composition.
1: Right.
0: Film mein gaiki to main karta hu sabke sath, lekin maine kaha jahan tak composition karta, kyunki mere liye composition is like giving birth to something.
1: Usme aapka apna ek signature hota hai jo sun ke hi agar keen listener hai wo andaaza laga sakta hai ki bhai ye aapka music hai.
0: Haan. तो इसके अंदर मैं अपनापन बहुत अंदर से निकालता हूँ, तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच्ड टू इट. जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा. मैं कहूंगा यार ठीक है, लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है, विल ट्राई बेटर. लेकिन कम से कम लोगों ने सुना तो सही. लेकिन यहाँ पर कई दफा होता था कि लोगों ने सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं, और वो पहले से डूब गया. अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का उन फिल्मों में से अगर कोई गाना मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है, मैं कहा यार ये क्या, मैं
1: ये और तकलीफ बढ़ा,
0: ये और तकलीफ बढ़ाती है, यू नो. अच्छा, लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता हूँ.
1: तो उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
0: देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, दिस रादर द साउंड ट्रैक
1: ओके
0: ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदिया.
1: जी,
0: the film, I really enjoyed making the soundtrack of the film Sadiyan, aur usme bade interesting kism ke gaane hain jo mere dil ke bahut kareeb hai aaj bhi.
1: Ji,
0: and mujhe bada usse bada bada dukh hua
1: ki film nahi chali,
0: ki wo film nahi chali, aur lihaza wo gaane jo the wo reh gaye. लेकिन वो गाने जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. अगर आप उनको सुनोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड मे बी व्हाई मे बी आई एम इमोशनली वेरी अटैच्ड टू दोस सॉन्ग्स.
1: लकी के कौन से गाने की बात,
0: सुन जरा. मैंने कहा सुन जरा, आई लव्ड, नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली आई लव्ड सो मेनी ऑफ द सॉन्ग. आई लव्ड शायद ये तो प्यार है, क्योंकि मेरी पहली मरतबा लता जी के साथ गाने का ऑनर हुआ
1: जी,
0: तो जो एक अगेन वो एक ख्वाब था मेरा.
1: कितनी धड़कनें बड़ी हुई थी
0: लता जी के साथ, अगेन एक जो एक्सपीरियंस था वो अनमोल था. मतलब कि मैं लता जी को पहले से जानता था, क्योंकि मेरा आशा जी के साथ आना जाना हमेशा रहता था, तो कई मरतबा दीदी के साथ भी मुलाकात होती रहती थी, और वो बहुत ही दिलचस्प खातून थी, वो बड़े मज़ेदार, शी वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ गुफ्तगू करने का, गपशप मारने का. लेकिन कभी काम नहीं किया, और जब पहली दफ़ा जब उनके साथ इसी गाने के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं तो बहुत नर्वस था, यू नो, आई वॉज वेरी नर्वस. और अच्छा पता है, ये जो महान लोग होते हैं ना, इज हु आर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, दे नो देयर ग्रेटनेस.
1: यस,
0: दे नो इट, दे आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट. मतलब उनके अंदर उस तरह का कोई मगरूरपन नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मुझे पता है कि मेरा असर जो है, ऑरा जो है, वो अगले बंदे जो मुझसे कई दर्जे जूनियर है उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी. You know what I mean? उनको पता है, और उनका सबसे बड़ा जो बड़ापन है
1: जी,
0: वो ये होता है कि वो आपको सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपको
1: ईज
0: कराते हैं, यू नो, टू मेक यू रिलैक्स, बिकॉज दे नो दैट आपके अंदर क्या, मतलब कि
1: हवाइयां उड़ी हुई हैं,
0: उनको पता है. तो उनका सबसे पहले तो ये होता है कि आपको काम डाउन करें. तो अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं पहली दफा रिकॉर्ड कर रहा था लता जी के साथ, तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया. अच्छा, उस जमाने में कहाँ BTS हुआ करता था, कहाँ जिस इस तरह की जो चीजें जो आजकल में होती हैं, और पैप्स तो होते ही नहीं थे, तो देयर वाज नो सच थिंग. तो मैं अपने ही किसी फोटोग्राफर को बुलाया, तो अब मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, मैं उनको गाना सिखा रहा था, ठीक है, मैं गाना बता रहा था उनको, कीबोर्ड पे था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी. उन्होंने देखा कि एक कैमरामैन है, तो उन्हें ये कैमरामैन, अच्छा मैं एकदम घबरा गया. मैंने कहा हाँ जी लता जी, कैमरामैन आप माइंड तो नहीं कर रही अगर कोई, अगर कुछ दो चार फोटोज ले ले. हाँ नहीं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं एक सेकंड मुझे खड़ा होने दो. मैंने कहा खड़ा किस लिए? मैं यहाँ पे खड़ी होंगी और ये, और शी हैड द पेपर विद द लिरिक्स, जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने, तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूँ.
1: अरे गजब,
0: मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त.
1: ओह,
0: शी वांटेड मी टू हैव दैट मेमोरी.
1: वाओ,
0: कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को, उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूँ. मैंने कहा यार कौन करता है ये,
1: कौन करता है,
0: कौन करता है? आप मतलब कि यू आर गिविंग मी दैट ऑन

that you're standing and wow. learning and giving me that honor as a music director, that you're giving me that respect, and I'm a kid in front of you. मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई, वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है genuine humility.

0: देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है।
1: ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है
0: जी।
1: मैं देखिए उनसे अच्छा मेरा जो यू नो आई मीन ही फॉर मी वाज ऑलवेज यू नो अ स्टार एंड आइकॉन एंड एंड यू नो अ लेजेंड यू नो एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब मैं इंटरैक्ट मैंने करना शुरू किया और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन सब लेजेंड्स के एक चीज जो कॉमन थी जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी वो ये था कि आई वाज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक, कि व्हाट वाज द प्रोसेस, कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए, कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है
0: जी, अपने आप।
1: तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा।
0: उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
1: ओह इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी।
0: अच्छा।
1: और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे बैठे, क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने 3-4 वर्जन्स किए थे। अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते, मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है, तो वो तो ऑफ कोर्स ही इज अ मास्टर एट दैट। तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी हम कहते यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे तो वी यूज्ड टू लिटरली फ्लिप अ कॉइन कि कौन सा शॉट रखे, क्योंकि वी डिडंट नो व्हिच वन टू कीप,
0: you know,
1: because they were all so good and different in their own way. He would give us every shot, he would give in a different way. तो वो उनके साथ काम करके जो एक्सपीरियंस मिला was something that was absolutely priceless. And I learned so much from all of these people. And it was such an incredible pleasure.

0: चलते चलते विविध भारती के सुनने वालों के लिए आप क्या गुनगुनाएंगे जो दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं और म्यूजिक के ट्रूली दीवाने लोग हैं।
1: इश्क तुम्हारा

0: वाह वाह वाह वाह, सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश बाकी रहे।
1: बेशक।
0: तो हमारे साथ ये वादा कीजिए कि अपनी पसंद के 10 गानों पर इसी तरह फ्री व्हीलिंग बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में लाइव आएंगे।
1: जरूर आऊंगा, जरूर, विद प्लेजर, विद प्लेजर।
0: शोर मचा के आपको बुलाएंगे।
1: तफसील में,
0: तफसील में, तफसील में, बिल्कुल। तब दूसरों की भी बातें होंगी, आपके उस्तादों की,
1: जरूर जरूर,
0: और इंस्पिरेशन की, आपके फेवरेट गानों की,
1: ऑफकोर्स।
0: तो उस मुलाकात का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माई प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों, आज के रंग तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग योगिता जाधव, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि

0: राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा विजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोफ को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

रंग दे बसंती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थी। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस उपलक्ष में हमने कुछ ऐसी फिल्में चुनी हैं जिनमें युवाओं की उपस्थिति दर्ज होती है। चलिए आज युवाओं के लिए हम करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके सारे सपने पूरे हों और उनके हौसले सदा बुलंद रहें। फिल्म 3 इडियट्स, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज है।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष

0: विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम एक जय घोष।
1: छिछोरे फिल्म का गाना है, नक्श अजीज और साथियों की आवाजें हैं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजला

0: जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें और आंगन में दोनों के नाम का एक पेड़ हो, उस पौधे में सदा प्रेम के फूल खिलें। लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद वो फिर उसी गांव में लौटी, मतलब वो यानी लड़की। पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थीं, मगर वो नहीं था। तभी हवा में जैसे उसकी आवाज गूंजी, बुझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गांव रे। वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था। ये वही जगह थी जहां उसने लिखी थी एक प्रेम कहानी। तो फिर आगे क्या हुआ, यही तो आपको बूझना है आज। आज आपको पूरी करनी है ये कहानी और दो लाइन में आपको बताना है कि आगे क्या होता है। उसका प्रेमी वापस मिलता है या नहीं, जहां से गाने की आवाज आई थी वहां उसका प्रेमी आया या नहीं, ये आपको बताना है। दो लाइन की एक छोटी सी इबारत लिखिए और

बहुत बड़ी टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं है, दो लाइन में बताइए प्रेमी उसका वापस लौटा या नहीं, अगर लौटा तो फिर क्या हुआ। अगर आप बूझ जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना हम प्रोग्राम के आखिर तक तो आपको बताएंगे ही कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। अब बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी लिखी है, कहानी का निचोड़ लिखा है किसी ने मिलती जुलती कहानी लिख डाली है, किसी ने अंदाजा लगाया है, लेकिन बहुत लोगों को अंदाजा लगाना बाकी है। तो आप जरा बूझिए कि इस कहानी में आगे क्या होता है, वो प्रेमी जोड़े में जो बिछड़ जाते हैं प्रेमी वापस लौटता है कि नहीं, और साथ में वो शब्द भी बूझिएगा जिससे गाने चुने हमने, वो गानों के बोल भी आप बताते चलिए। फिलहाल बताइए गीतकार का नाम, फिल्म है आज और कल, गीतकार का नाम बूझिए, संगीतकार है रवि, आवाज किसकी है ये तो आप बता ही सकते हैं। फिल्म आज और कल, इबारत में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से गाने सुनवा रहे हैं।

साहिल लुधियानवी गीतकार, ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, पर्वत, घर, फूल, वक्त, ख्वाब, नाम, प्रेम, प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों? और कंजूसी वहां कीजिए जहां हमने कहानी पूरी करने की बात कही है। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वत, पर्वतों के बीच में, पेड़ों के झुरमुटों के बीच, जब वो वापस लौटती है, एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको। एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतजार है। जब प्रेमिका गांव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा

आ रहे होंगे, तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं, कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है, जरा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज होती है। एक श्रोता ने लिखा है, कदम आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो, आज भी उसी के इंतजार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नजरों से नजरें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द पर्वत, चंबा, ख्वाब, पगडंडी, खूबसूरत गाना और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब जरा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए, फिल्म है आदमी और इंसान।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का लगाया आरोप। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी। छात्रों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कैंसर का जल्द पता लगाने और मरीजों की देखभाल के लिए इसे सरकार को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने पर विचार करने का किया आग्रह। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 29 पुलिस पदाधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति पदक के लिए अवर निरीक्षक कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ का किया गया चयन। और सीएमपीडीआई ने क्रिटिकल मिनरल और सतत विकास के क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के साथ किया समझौता। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले श्री बिड़ला ने सांसदों से कहा कि प्रश्नकाल चलने दें और सदन में गतिरोध उत्पन्न न करें। देश सदन को सुचारू रूप से चलते हुए देखना चाहता है। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर बार बार संसद की कार्यवाही बाधित करने की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन को लेकर कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाया।
1: हमारी सरकार लगातार सदन चलाने के लिए आग्रह कर रही है, विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है, जिसके वजह से वो बाहर नारेबाजी सिर्फ कर रहे हैं और आम लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके समर्थन में जो सरकार चल रही है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए ये मुद्दाविहीन है। ये जानते हैं कि चर्चा करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा ये कर रहे हैं।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ सीधे संवाद करने की अपील की। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने भी आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उधर भाजपा सांसद विद्युत वरण

0: ने आरोप लगाया कि झारखंड में परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं चरम पर हैं। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री महतो ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की।
1: जिस तरह लाठी से बर्बरता पूर्वक रवैया किया, ये सरासर गलत। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं बहाली में गलत तरीके से लोगों को बहाली कर दिया जाए, और जो मेहनत करता उसका बार बार एग्जाम नहीं दे पाता, उसमें एज लिमिटेशन है, तो उनका भविष्य जो अंधकारमय हो जाए। इसलिए बच्चे का जो डिमांड है, छात्रों का जो डिमांड है, वो हम लोग पूरी समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसको CBI को जाँच किया जाए, जो एग्जाम हुआ उसको रद्द किया जाए।
0: झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक राज सिन्हा ने अपने साथ हुई कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है। श्री सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर रांची जिला प्रशासन पर सदन की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने और उन्हें जबरन गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कैंसर का जल्द पता लगाने और मरीजों की सही देखभाल सुनिश्चित करने के लिए इसे सरकार को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने पर विचार करें। केंद्र ने न्यायालय को बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और 17 राज्यों ने पहले ही कैंसर को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है। न्यायालय ने बाकी 19 राज्यों को सिफारिशों पर विचार करने और उचित फैसला लेने का निर्देश दिया। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 29 पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इन पुलिस पदाधिकारियों को अपनी वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के जरिए पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पदक, वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति पदक के लिए अवर निरीक्षक कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ का चयन किया गया है। राज्य के 30 नगर निकायों ने पेयजल योजना को लेकर पिछले 3 वर्षों की समीक्षा रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी है। इसके आधार पर नगर विकास विभाग शुल्क संशोधन का अंतिम प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके अनुसार वाटर कनेक्शन शुल्क में 15-20% तक बढ़ोत्तरी की जा सकती। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। CMPDI ने क्रिटिकल मिनरल्स और सतत विकास के क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित ड्यूक विश्वविद्यालय के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी के तहत कोयला और खनन से निकलने वाले अपशिष्टों जैसे ओवरबर्डन, फ्लाई एश से रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम और ग्रेफाइट निकालने, लो कार्बन तकनीकों और पुराने खदानों के पुनरुपयोग पर संयुक्त अध्ययन किया जाएगा। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन अभियान चला रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के दौरान कुल 68 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा और छोला चटनी जब्त किया। सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ ने IIT-ISM प्रबंधन के खिलाफ पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। संघ ने प्रबंधन पर पैसे काटने, PF, वेतन और बोनस में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह ने बताया है कि मांग रखने पर सुरक्षा गार्डों को हटा दिया गया।
2: सैलरी कम दिखा के इनका PF लूटा गया है, वेजेज में गड़बड़ी है, बोनस में गड़बड़ी है, और इनके सेवा का मोल यही दिया गया कि जब इन्होंने विरोध किया कि हम भाई पैसा मेहनत का नहीं देंगे आपको, तो रास्ता बाहर का दिखा दिया गया। और अनुशंसा भी किया गया है दिल्ली चीफ लेबर कमिश्नर के पास कि इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और इन पर प्रोसिक्यूशन प्रोसीड्यूर डायरेक्टर पर चलाया जाए।
0: धनबाद स्थित भटिंडा फॉल में डूबने से चाचा भतीजे की मौत हो गई है। जोगता थाना क्षेत्र निवासी आयुष कुमार अपने जन्मदिन पर चाचा प्रजीत पांडे और दोस्तों के साथ भटिंडा फॉल

0: फॉल घूमने गया था। फोटोग्राफी के दौरान अचानक पैर फिसलने से आयुष और उसके चाचा तेज बहाव में बह गए। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर कल चेतावनी रेखा को पार कर गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया और गंगा की दूसरी ओर रहने वाले ग्रामीणों और बस्तियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी।
1: इस बार रामपुर वाले एरिया भ्रमण करके देख लेंगे कि वहाँ क्वेश्चन के आवश्यकता होने पर क्या प्रबंध किए जाने, बाकी सप्लाईज के, टेंट्स के इत्यादि सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। टेंडर ऑलरेडी किया जा चुका है। हम लोगों ने ओझा टोली घाट पे चेक किया तो 26.30 चेतावनी रेखा से 5 सेंटीमीटर अभी पार कर चुका है।
0: मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राज्य में बारिश का सिलसिला फिर तेज होगा। मौसम विभाग ने अगले 1 से 3 घंटों में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ बोकारो, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची सहित आसपास के जिलों में 16 अगस्त तक घने बादल छाए रहने और भारी बारिश के संकेत हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का लगाया आरोप। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी। छात्रों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कैंसर का जल्द पता लगाने और मरीजों की देखभाल के लिए इसे सरकार को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने पर विचार करने का किया आग्रह। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 29 पुलिस पदाधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति पदक के लिए अवर निरीक्षक कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ का किया गया चयन। और सीएमपीडीआई ने क्रिटिकल मिनरल्स और सतत विकास के क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के साथ किया समझौता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ने लिखा है कि इबारत अधूरी बताई गई है और लिखा है कि हम पूरी करें। मिलना बिछड़ना नियति में था, जब गाना सुना पुराना सजन मिल गया, फूल खिल गए, मिलन हो गया, गिले शिकवे सब दूर हो गए। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। सिर्फ प्रेम में बिछड़ने की वजह गिले शिकवे ही नहीं होते हैं, कई बार मर्यादा भी होती है, समाज भी आड़े आता है, परिवार भी आड़े आता है। तो ये अब हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। जरा बुनिए आगे वाली कहानी, सिर्फ 2 लाइन में, 1 लाइन में। हमें पता है कि आप बुन सकते हैं ये कथा। चलिए अब हम आगे बढ़े और आपको सुनवाए अमानत फिल्म का गाना। आपको बूझना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमें लगता है कि ये फिल्म आप सबने देखी जरूर होगी, तो बूझिए जरा कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं।

आज की इबारत में जो कथानक है कुछ निचोड़ इस गाने में है। जब प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं तो दिल से दिल की बात होती है, एक पुकार होती है, एक तड़प होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसा ही ये गाना भी था और हमने पूछा था कि इसमें कलाकार कौन है, मनोज कुमार साधना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और साहिल लुधियानवी के बोल होते हैं, रवि का संगीत है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। फिल्म गोदान, नदिया के पार, नीले गगन तले गाने के बोल भी लिखे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने। गांव के परिवेश पर हमने पूछा था कि ऐसा गाना जिसमें नदी है और गांव है तो कोई गाना याद आता है तो वो भी बताइए, श्रोताओं ने वो भी बताया है। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता लगातार अपनी यादों की गलियारों में विचरण कर रहे होंगे और गाने याद कर रहे होंगे। याद कीजिए, बहुत सारे श्रोता अगर एक ही गाना लिखेंगे तो हम वो गाना बजाएंगे भी और बहुत सारे श्रोताओं के लिखे हुए गाने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मुड़ी तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी, आंखों में वही प्यार और हाथ में उस पेड़ की एक हरी टहनी जिसे उन्होंने कभी साथ लगाया था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रही बात कहानी की तो दिल हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो कभी मिला नहीं या मिल नहीं सकता। जब उसने वो गीत सुना तो कुछ पल के लिए वो अतीत में चली गई, पर देखा तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़का वो गीत गुनगुना रहा था। जब उसने पूछा कि उसे ये गाना कैसे आता है तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता अक्सर गुनगुनाते रहते थे और कहते थे एक दिन कोई ये गीत सुनकर उसके बारे में जरूर पूछेगा। क्या बात है भाई, ये तो एक अलग सी कहानी डेवलप हो रही है। तो ठीक है, आज अपने कहानीकार दिल को टटोलिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, गाने के बोल की लंबी फेहरिस्त भेजी है, पर्वत के पीछे चंबे

गांव, देखो मैंने देखा एक सपना, काश ऐसा होता, तेरी गली में होता मेरा चौबारा, वगैरह वगैरह बहुत लंबी फहरिस्त है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहेगी, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मधुमती फिल्म का गाना आ रहा है, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम, उम्मीद है आप सही सही बताएंगे, जल्द बताएंगे।

मधुमती फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, शैलेंद्र और सलील चौधरी, मोहम्मद रफी की आवाज थी। और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की। और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उस प्रेमी तक इन गानों के जरिए आवाज पहुंचनी चाहिए, तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें। अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही है फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास

किन हीरो पर, किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म महबूबा? जल्द बताइए ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सकें। हीरो हीरोइन लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

महबूबा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और दरअसल इस गाने का जिक्र भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया था, तो समझ लीजिए कि आप सभी की फरमाइश पर यह गाना हमने बजाया। तो आज की इबारत से कोई शब्द आपको सूझ रहा है जिस पर बहुत सारे गाने आपको सूझ रहे, तो वो आप लिख डालिए, फिर वही गाना हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हरियाली अमावस्या है, सुरीला सफर में नदी पहाड़ों की बातें हैं और वैसे ही गाने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सुरीला सफर। एक श्रोता ने लिखा है कि बीते हुए दिन और हालात लौट कर नहीं आते, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र है तो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल सकते हैं। सच क्या है, बीता हुआ कल जो समय निकल गया शायद वापस नहीं आता, टूटे हुए ख्वाब पुराने जख्मों को भरने में समय लगता है, हालात अगर हालात बदल जाएं तो अलग हुए रास्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब बात बीते हुए दिन की चली है, तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको पूछना है किसकी है आवाज और गीतकार का नाम। फिल्म है

सभी श्रोताओं ने सही बताया, सुमन कल्याणपुर की आवाज है, गुलशन बाबरा के बोल हैं। ये बात, ये जानकारी कम श्रोताओं ने दी है। दत्ताराम का संगीत और फिल्म थी फर्स्ट लव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उसने देखा कि गाना एक कुटीर से आ रहा है, जाके देखा तो प्रेमी की बेटी गा रही थी, प्रेमी तो गुजर गए थे। ये एंड लाइन हमारे श्रोता ने लिखी है और सब अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लिखें कि कहानी का अंत क्या होना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप द्वारा प्रस्तुत शानदार इबारत के साथ सुरीला सफर के लाजवाब कमेंट सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हो रहा है, हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक जरा सी कहानी है छोटी सी, उसमें आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, उस छोटी सी कहानी को कितना विस्तार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब जरा बताइए हीरो हीरोइन का नाम और कौन से शब्द इस गाने में आते हैं इबारत वाले, और कौन से शब्द वाले गाने बाकी हैं, जरा ये भी तो लिखिए। फिल्म मेरा नाम जोकर, आपको हीरो हीरोइन का नाम बूझना है। और हाँ, अगर वो प्रेमी मिल जाता है तो फिर वहां पर कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये भी बताइएगा।

आप सुन रहे थे ये गाना, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुकेश की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोताओं ने बताया है राज कपूर और सिमी गरेवाल इस फिल्म में होती हैं, इस गाने में। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आजा सनम मधुर चांदनी में हम ये भी गाना होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो मुलाकात कैसी होती है, मतलब वो प्रेमी जोड़े मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वहाँ पर जब अगर वो जोड़े मिलते हैं तो कौन सा गाना होना चाहिए, ज़रा ये बताइए। देखते हैं, आपने बहुत सारे श्रोताओं ने कोशिश की है कहानी पूरी करने की, अगर वो गाना भी बता देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आपकी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज़ के पीछे गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस हवा थी जिसमें उसकी आवाज़ और उसके बीते दिनों की खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन के उस पुराने पेड़ को छुआ जिस पर दोनों के नाम अब भी साथ साथ खुदे थे। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, बस उसकी आहटें दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं। बरसों बाद जब यादों की कोई खिड़की अचानक खुलती है तो बीते दिनों की खुशबू के साथ एक हल्की सी टीस भी लौट आती है। कुछ प्रेम कहानियां इस जमीन पर मुकम्मल नहीं होती, वे बिछड़ कर आसमान

फिल्म का गाना था भूपेंद्र हेमलता, हेमा मालिनी की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। और ये गाना हमें अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि इस गाने में पूरी कहानी निहित थी, इसलिए गाना सुनवाया। और एक गाना अभी ज़रूरी है जिसका जवाब आप सभी ने नहीं दिया, देखिएगा शायद वो आपका भी फेवरेट सॉन्ग हो और आपने भी वही गाना सुना चुना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें मिलने की नहीं एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण हो, यही प्रेम की पराकाष्ठा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद कागज पर काली स्याही से लिखी हुई दास्तान हो, इसे कृपया आप पूरा कर दें। ये टिप्पणी पढ़ी जा चुकी है, शायद ये दोबारा और तिबारा भी आई है एक टिप्पणी। और अब वो इबारत मैं आप तक पहुंचा रही हूं जिस इबारत की बात बार बार की इस प्रोग्राम में। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें, आंगन में दोनों के नाम के एक पेड़ हो, लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद फिर उसी गांव में वो लौटी, पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में उसकी आवाज गूंजी, बूझ मेरा क्या नाम रे, वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था, उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे बीते हुए दिन फिर उसके सामने खड़े हैं। कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ टूटे ख्वाब उम्र भर आंखों में अपना घर बनाए रहते हैं। अब इस इबारत के मुताबिक तो मिलता है वो प्रेमी जोड़ा, प्रेमी आता है मिलता है, लेकिन एक बेनाम रिश्ते के साथ। वो रिश्ता ऐसा था कि उसका मिलना न मिलना एक समान था, लेकिन कई मुलाकातें ऐसी होती हैं, कई मुलाकात ऐसी होती है कि आपके जहन में बस जाती है, लगता है कि अधूरा प्रेम भी मुकम्मल प्रेम है। अब

तो क्या बताइए, आपने ये गाना आखिर में सोचा था कि ये गाना बजाया जाएगा? वापस फिल्म का ये गीत था और अधूरी मुलाकात को हमने मुलाकात पूरी करवा दी और बहुत सारे श्रोताओं ने यही चाहा भी था इस कहानी में कि अंत ऐसा ही हो कि सच्चा प्रेम हो तो जरूर मुलाकात होती है, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छांव में बैठकर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है, उसकी शाखाएं फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। बस वो संवाद जो होता है मौन की भाषा, वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं और समझ लेते हैं। अब आज के प्रोग्राम का सफर पूरा हुआ, सुरीला सफर आज बस इतना ही। सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान और आज त्रिवेणी में बातें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, यानी 26 बरस हो गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों का जो प्रतिशत है वो 16% है, और अगर भारत का देखें तो 15 से 25 साल की उम्र के लोग भारत की कुल आबादी का तकरीबन 54% हिस्सा हैं, यानी कि भारत एक युवा देश है और दुनिया में भी युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। ये युवा ही हैं जो दुनिया को बदलते हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं, नई खोजें करते हैं, नए रास्ते निकालते हैं, नई व्यवस्था बनाते हैं, और ये युवा ही हैं जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। पर युवाओं को एक दिशा देने की और जिम्मेदारी का बोध कराने की जरूरत है।

इत्तेफाक की बात है कि 12 तारीख को ही भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पर अगस्त के महीने में नहीं बल्कि जनवरी के महीने में, क्योंकि वो दिन जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। जैसा कि मैंने कहा कि ये युवा ही हैं जो बेहतर दुनिया बना सकते हैं, लेकिन किसी भी पीढ़ी के बुजुर्गों से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हमारे जमाने के युवा जिम्मेदार हुआ करते थे, आज के युवा तो दिशाहीन हैं। सवाल ये है कि बदलती हुई इस दुनिया में कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो ध्यान भंग कर रहे हैं, पर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि युवा आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। खेलों में हर रोज बनते हुए रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटीज में लगातार ऊंचे अंक प्राप्त करने वाले युवा, इसके अलावा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, हर क्षेत्र में युवा नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इन युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों, हम उन पर इल्जाम न लगाएं, हम उनकी गलतियां ना निकालें, बल्कि हम उन युवाओं को एक नई चेतना की तरफ आगे बढ़ाएं।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे और वो बात ये है कि हम सब के भीतर थोड़ा ना थोड़ा युवा मौजूद होता है। हम सब के भीतर एक जोश है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, और इस युवा तरंग में ही दुनिया उपलब्धियां हासिल करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है विभिन्न परिस्थितियों को पहचानना और युवाओं के जरिए वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना। ये युवा ही हैं जो दुनिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं, ये युवा ही हैं जो हर तरह के भेद की दीवार तोड़ सकते हैं, ये युवा ही हैं जो विश्व व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। बस युवाओं पर विश्वास करें और उनके साथ आगे बढ़ते चलें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार है। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है।

0: ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जाँच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना

0: और भारतीय राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉ. अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

వందే మాతరం. ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा. स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी.

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: परख फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
4: कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
4: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
4: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज की मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
4: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देवबर्मन का संगीत।

0: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच तथा कार्रवाई की मांग दोहरा रहे हैं। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगें स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। सदर अस्पताल में इलाजरत चार छात्रों के स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर बताई गई है। चिकित्सकों के अनुसार उनमें हल्का इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन है जिसका उपचार किया जा रहा है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कई विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आंदोलन स्थल पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और छात्र नेताओं ने कहा कि कोर कमेटी के साथ विचार विमर्श के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली में भाजपा सांसदों ने जेपीएससी मामले और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध मार्च में शामिल हजारीबाग के भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने हेमंत सोरेन, ग्लोबल वार्मिंग और कम बारिश पर चिंता जताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने पर जोर दिया।
2: आज वन महोत्सव में पूरी जिला की टीम ने शिरकत की और मैं डीएफओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने कार्यक्रम करवाया और हम लोग को पेड़ लगाने का मौका दिया। मैं सभी कोडरमा जिला वासियों से यही अपील करता हूँ कि अपने घर में कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगाएं और जो पुराने वृक्ष हैं उनको बचाने का भी कार्य करें।
0: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य में 15 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए सिमडेगा और सिंहभूम सहित 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 अगस्त को रांची, खूंटी और लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ही सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
2: स्वीकार
1: लिया है और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
2: खांसी
1: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है
2: और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है तो पानी उबाल कर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं बहुत सारी योजनाएं होती हैं तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा और ऐसे ही देखो ना ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियां बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना
2: मेरा तो मन करता है
1: बिल्कुल तो वैरायटी सबको चाहिए एक विविधता होनी चाहिए ना सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
2: हाँ और है ना वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं तो उसके व्यंजन बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने हमारे श्रोताओं ने लिख कर भी भेजे हैं।
1: बिल्कुल
2: किसी ने डोसे का लिखा है किसी ने उपमा लिखा है तो किसी ने खीर लिखा है तो आप भी लिख कर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
1: बिल्कुल और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा और यही शब्द है हमारा आज
2: मेहनत तो आज का है शब्द हमारा विचार आपके इसमें मेहनत है यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
1: बिल्कुल और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगी हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे
2: चट से पहन लेंगे
1: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं
2: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है
1: जी।
2: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल उन सभी को उनकी ऊर्जा को सलाम और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को सवारते चलें
2: जी।
1: और अब हम क्या करें
2: गीत सुनते हैं
1: चलो

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में।
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा। हमारे साथ में इतने सारी श्रोता, इतनी सारी सखियां जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियां इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई है। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है वो लोग ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी

0: दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
1: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आते।
0: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी।
1: हाँ,
0: है ना, इसे संगठित करके रखना होता है।
1: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है। क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनका उनकी मानहानि ना हो, या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
1: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है। थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
1: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और आप क्या किया जाए,
0: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
1: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: तो चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो ओडिशा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इकत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग करके पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंद कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेम्पल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है
0: जी। और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: या चुभ रहा है,
0: वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक हल्का सुनहरा और मैट टेक्सचर मिलता है।
0: केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे, आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं, कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी

0: की है, तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है, जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: कितना
0: सुंदर मैसेज है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती है
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती हैं, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है,
0: और उसमें सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है। नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ सेल लगा है।
1: हम महिलाएं यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
0: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है। पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना अखबारों से

0: हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी अगर उसमें ऐसा होता यानी कोई मेन होल में गिर गया है मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुककर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें सब कुछ पता चलता रहता है, यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियां भी हम प्राप्त कर पाते हैं। जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए उम्र कोई भी हो बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है बल्कि

0: एक संदेश आया है, ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
1: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना, उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना, सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
1: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
0: बिल्कुल, और ये संपादीय जो संपादकीय लेख जो है इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है, तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
1: और आप क्या करना है,
0: हमें तो गीत सुनना है,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन स्क्रोलिंग से करना है। उतने नहीं, अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है, जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मजा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे बस, बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: और साथी कहते हैं
0: जी
1: पढ़ना चाह रहे,
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती हैं, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती हैं, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए, कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: और धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं। बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है, और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है, यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले, पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही,
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना, उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है 1/2 कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक, सब्जियां लेनी है प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूने। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। और इसी आटे से आप नमकीन पराठे रोटी बना सकते हैं, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी प्याज टमाटर हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना।
0: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है। कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया, अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक

0: श्रोता ने, कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इसकी इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
1: और अब क्या करना है?
0: देखिए क्या करते हैं।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मेपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं। सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। दिल्ली में भाजपा सांसदों ने झारखंड छात्र आंदोलन और जेपीएससी मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में मकर द्वार पर मार्च निकाला और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी और कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। रांची स्थित कांग्रेस भवन में आज गठबंधन सरकार के मंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मौजूद रहे। मंत्रियों ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने जेपीएससी छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और राजनीतिक लाभ के लिए गलत नैरेटिव सेट कर रही है। बोकारो जिला परिषद सभाकक्ष में आज ग्रामीण रोजगार आजीविका एवं विकसित भारत विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में के मंत्र के साथ जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। चतरा जिले में जल संरक्षण और सिंचाई विस्तार के लिए जिला भू संरक्षण विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर तालाबों का जीर्णोद्धार और डीप बोरिंग का कार्य कराया जा रहा है। इससे 1130 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा बहाल हुई है और 3500 से अधिक किसान सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। पाकुड़ के शहरी क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक पुलिसकर्मी और व्यवसायी के घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने के गहने और नकदी चुरा ली है। चोरों ने एक वकील के घर भी चोरी का प्रयास किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर सामने की जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पाकुड़ में स्कूली बच्चों ने एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में राष्ट्रध्वज थामे स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के नारों के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था,

0: और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने, लेकिन
1: आदमी।
0: आदमी काम का
1: हाँ
0: है। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी। उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने हो, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
0: नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा, मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह।
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट।
0: हाँ, वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल।
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया
0: जी,
1: है ना? और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो।
1: रेडियो से रेडियो।
0: हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहाँ कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे बम्बई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहाँ से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला, जो कहना चाहिए, सेलिब्रिटी मोमेंट था वो।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: बिल्कुल
0: और
1: एक
0: हर
1: मई
0: एक
1: को
0: मई
1: होता
0: के
1: है।
0: 1 मई में उनको कॉल किया करता
1: क्या
0: था।
1: बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा,
0: फिल्म
1: शंकर
0: जय किशन,
1: हाँ बिल्कुल, जरूर।
0: शैलेंद्र।
1: हाँ, सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए. बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू.
1: बिल्कुल.
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था. मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर करके कुछ एक
1: बना रहे,
0: 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे. तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं. तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा. मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहां आया. यहां आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी. तो मैं यहां आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में. विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया. वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो क्या करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो. वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस समय
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम. राजेश देवराज हेड राइटर होते थे. तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा. मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं. मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे. बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी. तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई. उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा. किकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है. वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में. हम मिलते रहे, 2-3-4 बार मिले उसके बाद. अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए. तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बंबई

0: चल पड़ना चाहिए, बैक पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैक पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीज़ें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज़ से। 4-5 महीने में मैंने कहा अगर यही करना है तो क्या मजा नहीं आएगा। हाँ, ये वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था वेंकटेश ने,
1: वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर,
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया, तो सैंडविच खाते हैं चलो। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे हैं,
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहाँ पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दंभ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक 2-3 एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया। और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया, इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब, हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
0: ओके
1: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह,
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं। ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया कि, तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
0: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
1: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था।
0: Right.
1: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा। और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
1: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे 2-3 बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि
0: आता है इसको,
1: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे, तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर प्रस्तुत है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का आज का भाग, सुनिए।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
3: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
3: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संग संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
3: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
3: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
3: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भू विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
3: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों

0: का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ, उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
1: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
1: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर

0: रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या?
4: वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
5: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊँगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
5: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
5: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
5: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
5: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
6: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
6: Is that right? You black monkey?
5: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
6: बात जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
6: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
6: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडरल, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
6: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में

0: सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
1: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
1: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
1: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
3: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं की सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
1: क्या हुआ सुभाष बाबू?
3: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
0: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
3: कौन? शिशिर?
4: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
3: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
4: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
3: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
4: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
3: ठीक है।
4: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
3: तो फिर ठीक है, आओ चलें।

16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।

0: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ, इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
1: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
2: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
1: लाओ लाओ।
2: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
0: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
2: अच्छा, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज साहब।
3: लो भाई, यहाँ तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो।
4: ये अखबार कहाँ गया?
3: हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
5: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
6: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
7: जय हिंद,
8: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं।

0: वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
1: हम तैयार हैं।
0: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
2: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
0: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
3: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
0: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
3: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
1: नहीं, नहीं, कागज मुझे।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सभी सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का आज का भाग। बोल रहे हैं हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज। संध्या के 5 बजने को हैं, कुछ ही सेकंड्स में संध्या के 5 बजेंगे और 5 बजते ही आप सभी सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर बाल कल्याण संघ के कार्यक्रम में बाल तस्करी और बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार, पंचायत, पुलिस और युवाओं के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक दिवसीय निजी दौरे पर बोकारो पहुंचे। बोकारो हवाई अड्डे पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और झामुमो नेताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के धुरवा स्थित प्राचीन जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन के लिए महाधिवक्ता रोहितास्य रॉय की अध्यक्षता में 11 सदस्य कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की नई योजना के अध्ययन के लिए यह कदम उठाया है। 2,20,00,000 रुपए के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्र बेसरा सहित 3 हार्डकोर नक्सलियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नितेश कुमार सिंह ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियंताओं को गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा है। साहिबगंज में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों को चेक बाउंस और अन्य समझौता योग्य मामलों को चिन्हित कर उनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है इवनिंग मेलोडी।

ये शाम की महफिल है, इवनिंग मेलोडी की महफिल। आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत करते हैं मुकद्दर का फैसला इस फिल्म के इस गीत के साथ। आइए इस गीत के साथ दिन भर की थकान मिटा लें, जिसे गा रहे हैं किशोर कुमार और मोहम्मद अजीज साहब।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से इवनिंग मेलोडी का रसस्वादन कर रहे हैं अपने दोस्त माणिक के साथ आप सभी। ढल रहा है आफताब, छाने लगी है शाम, दिल के तार हिल उठे, लिया जो तेरा नाम। शाम का ये सुहाना सफर और आपकी याद, हर सुर में बसा है बस आपका ही प्यार।

गीत आपके रेडियो स्टेशन से आपके रेडियो सेट तक पहुंच ही रहा है। बता दूं, गा रहे हैं मोहम्मद रफी, लव इन टोक्यो। इस फिल्म के लिए

आसान तो नहीं भूल जाना किसी को जब दिल में बसाया हो उसको। इवनिंग मेलोडी में इस गीत के साथ आइए उसे भुलाने की कोशिश करें जो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता।

आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से इवनिंग मेलोडी में इस खूबसूरत और रूहानी एहसास को महसूस कीजिए। फिल्म का नाम है कामचोर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। बस थोड़ी ही देर में किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनिए। आज स्टूडियो से लाइव आप सबके साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे यशमेंद्र कुमार यादव।

पुरजोर तरीके से भाई अपन काम करो थीं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम जानकारी लेके आ ली है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त के मनावल जाए। एकर मुख्य उद्देश्य युवा के मुद्दा के वैश्विक स्तर पर उठावे के आर सामाजिक आर आर्थिक विकास में उनकर भागीदारी के बढ़ावा दे है। और वर्ष 2026 के थीम विहीन संदर्भ सामान्य आकांक्षाएं हैं, जैसे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 17 दिसंबर 1999 को 12 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाव थी और प्रस्ताव करल गेल है। तो किसान भाई बहन हम जानकारी लेके आ लिए और बात करबे कि आज के बाद अगस्त माह में जो खरीफ फसल हो वो है कीट प्रबंधन पहचान रोकथाम और नियंत्रण के उपाय कैसे करल जाए चाहिए। तो बात करबे कि अगस्त महीना में खरीफ फसल जैसे हो गए धान मक्का और सोयाबीन आदि में जो कीट प्रकोप हो जाए तेजी से बढ़ो लगो है। धान में जो वो है तना छेदक बीमारी और पत्ती लपेटक ये दो चीज आ जाए। जैसे धान में कहर का मतलब है कि तना छेदक हो जाए और पत्ती लपेटक हुआ है। मक्का में फॉल आर्मी वर्मा और सोयाबीन में जो बीमारी पकड़ ले है इलियो के खतरा रहो है। एकर में कहा है कि इस समय में हल्का दवाई से छिड़काव करे के भी चाहिए ताकि जो है से जे भी किसान भाई बहन के जो फसल है जो लगाओ थे वो किसी तरह से बर्बाद ना हो जाए। दूसरा बात का है कि किसान भाई बहन के अगस्त महीना में जैसे कह जा सको कि बहुत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है किसान भाई बहन की बहुत आदमी अपन अपन खेत में रोपा रोप लेथिन है और रोपा रोप लेथिन है। कहीं कहीं किसान भाई बहन के ये धान के बिचड़ा तैयार है उनके पास ओकर भी जो है से अच्छी तरह से अपन रोपाए बढ़िया से ना कर पा रहे थी। तो एकर में कहा है कि किसान भाई बहन के चाहे कि हम इन बार बार रेडियो के माध्यम से कहो ये कि किसान भाई बहन जब धान के जब रोपाए करे से पहले उनकर खेत के जो तैयारी करे के चाहिए। जैसे धान के बीजा जब तैयार हो गए तो कह जा सको कि जेठ बैसाख में ही उनकर अपने खेत के अच्छा तरह से जोताए गहरी जोताई के साथ साथ सबसे पहला उनका ध्यान दे पड़ते मेढ़बंदी के और मेढ़बंदी के जो है से कैसे किसान भाई बहन सुधारा थी। तो ओकर में कहा है कि जब बढ़िया तरह से जब तक आर और मेढ़ के ओकरा कोड़ के खाब के बैठे थी ना तो ओकर में कहा है कि किसान भाई बहन के बहुत परेशानी हो जाए। जिसमें अभी पानी की जिस तरह से किल्लत हो रहा है जैसे कह जा सको कि पानी के जो संचय है जल संचय किसान भाई बहन ना अगर बढ़िया से रखो थीन तो उनकर पास कहा होते कि पानी के बहुत किल्लत हो जीते। जैसे अगर उनकर मेढ़ सही से ना रहो है तो बहुत अति आवश्यक है उनका खेत में पानी रखना। दूसरा बात कहा है कि यहरा तालाब के भी देख रेख उनका करना बहुत जरूरी है। जैसे जे भी यहरा तालाब में पानी अभी कुछ भर गया है या भरे बाकी है तो वो यहरा तालाब के या पोखरा के बहुत अच्छा तरह से उनका देखभाल करे के चाहिए। और बात यहाँ रहा है कि किसान भाई बहन जैसे बिचड़ा रखो थे तो उनका ये सोचे चाहे कि हम पानी के बदलाव अगर में करते रहिए लेकिन कहा है कि पानी के बदलाव तब करते जब देख रहे थे उनका कि कौन सा स्थिति उनके अगल बगल में पानी है कि ना। और दूसरा बात का है कि किसान भाई बहन अगर अच्छी तरह से अगर धान के फसल अगर चाहो थीं तो एक पानी बहुत ज़्यादा दिन तक न रखा थीं। तो हम सुनाओ जरूरी संदेश।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अभी हम बात कर रही है कि पानी के बारे में कि धान के अच्छा पैदावार खातिर कितना ओकर में पानी चाहिए, ओकर में का है कि कितना मात्रा में पानी बदले के चाहिए। तो बात कर रही है कि धान के जे अच्छा पैदावार किसान भाई बहन चाहो थीन, तो समय पर सिंचाई बहुत जरूरी है, उचित खाद प्रबंधन और कीट से भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। खास तौर पर कहा जा सको किसान भाई बहन, तो रोपाई के बाद खेत में 2 से 3 इंच 3 सेंटीमीटर पानी बनाव रखे चाहिए, जिसे 2 से 3 सेंटीमीटर पानी किसान भाई बहन के खेत में चाहिए। ओकर बाद का है कि किसान भाई बहन के 20 से 25 दिन पर केचुआ या कल्ले बढ़ावे खातिर यूरिया या जिंक दे सको थे। ओकर में का है कि बालियां जो हुआ है, बाली जो हुआ है, कल्ली हुआ है, कल्ली के बाद बाली जो हुआ है, निकले समान एनपीके खाद के छिड़काव ओकर में करे के चाहिए। और किसान भाई बहन के बता दिए कि सिंचाई प्रबंधन जो हुआ है रोपाई के तुरंत बाद में खेत में जो है से 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरे, ताकि जो है से पौधा अच्छा तरह से टिक पावे। शुरुआती में कह जा सको कि 7 दिन तक हल्की सिंचाई करे के चाहिए किसान भाई बहन के, और ज़्यादा पानी जो है से जड़ के सड़ा सको है, ज़्यादा पानी ओकर में किसान भाई बहन के अपन धान के खेत में रखे के जरूरत न खे। खास तौर पर कह जा सको कि कल्ला जब फूटो लगो है, कल्ली जब निकलो लगो है समय में, तो 20 से 45 दिन की अवस्था में खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी जो है से ओकर में लगातार रखे के चाहिए। और कह जा सको किसान भाई बहन की खाद और उर्वरक जो है रोपाई के समय में DAP और SSP और पोटास के जो है वो है एकर में डोज देवे के चाहिए, छिड़काव करे के चाहिए। और फसल के जो है से 20 से 25 दिन के होवे पर यूरिया के साथ जिंक सल्फेस किसान भाई बहन मिला के ओकर में छिड़काव कर सको थीन। ओकर बाद का है कि जब बाली आवे लगो है, जब बाली बने के अवस्था हो जाए तो एकर में गाभा हुए जो अवस्था हुए में जैसे NPK जो है से 52:34 और 1 से कह सको कि 1.5 किलो प्रति एकड़ एकड़ में बोरोन के छिड़काव किसान भाई बहन के करके चाहिए। दूसरा बात का है किसान भाई बहन कि खरपतवार और कीट के नियंत्रण किसान भाई बहन कैसे करथिन, तो निराई गुड़ाई करे के जो है से खेत के घास पतवार से मुक्त रखे के चाहिए। निराई गुड़ाई जब करथिन तो खर पतवार ओकर में स्वाभाविक रूप से किसान भाई बहन निकाल ही देथिन, तो कोशिश ही करे के चाहिए कि निराई गुड़ाई एकर में है कि खर पतवार ना रखे के चाहिए। दूसरा बात का है कि जो तना छेदक हो है जैसे पत्ती लपेटक हुए कीट दिखे पर कृषि विशेषज्ञ के सलाह से ही कीटनाशक जैसे करटाप जो है से एक हाइड्रोक्लोराइड या क्लोरोप्रोफाइल जिससे के प्रयोग किसान भाई बहन एकर में करे के चाहिए। और यदि अगर एकर में पत्ती अगर पीला पड़ रहा है तो पत्ती पीला पड़ रहा है तो मैं कहा है कि नाइट्रोजन या फेरस जिंक की कमी के जाँच किसान भाई बहन करके सही एकर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के छिड़काव किसान भाई बहन के करे के चाहिए। तो किसान भाई बहन के हम कहल चाहोगे कि जे भी हम किसान भाई बहन के माध्यम जे अपन खेती बाड़ी करो थीन तो बहुत ढंग से करे के चाहिए, ताकि का है कि किसान भाई बहन के एकर में खटो भी उतने थीन, मेहनत भी उतने करो थीन। एक चीज और बता रही कि धान के पत्ती में जब पीला पड़ो लगो तो वह का कारण है और का करे चाहिए किसान भाई बहन के, तो धान के जो पत्ती पीली पड़ो लगो है तो मुख्य कारण हो वह है नाइट्रोजन, आयरन या जिंक, जिसे कहा है कि जैसे पोषक तत्व की कमी हो जाए खेत में पानी के असंतुलन या सुखाना जल भराव एकर में कहा है कि खरपतवार नाशक के गलत इस्तेमाल और कीड़ा के फंगस के प्रकोप भी शामिल रहे एकर में, तो एकर में कहा है कि पोषक तत्व खातिर किसान भाई के नाइट्रोजन के कमी पुराना और निचली पत्तिया से टीप से पीली पड़े लगो है और एकर में बढ़वार रुक जाए, तो ये बहुत खराब बीमारी तरह से हो जाए किसान भाई बहन। तो कोशिश करे के चाहे किसान भाई बहन के कि एकर में ऐसे एकर अच्छा तरह से ख्याल रखे थे। तो किसान भाई बहन हम बता देवल चाहो कि ये किसान भाई बहन खेती बाड़ी करो थीन, अभी लीज पर जमीन लेके किसान भाई बहन एक ऐसा किसान युवा किसान थीन जे बैगन टमाटर खेती कर ले थी, तो आओ जानकारी सुनाओ।
1: किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं ग्राम मझगावां प्रखंड मयूरहन जिला चतरा, और यहाँ एक सफल युवा किसान हैं जो लगभग 10 से 12 एकड़ ज़मीन लीज में लेकर बैगन और टमाटर की खेती की शुरुआत किए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनसे इनका परिचय, आपका नाम क्या हुआ?
2: संतु कुमार।
1: आप लगभग कितने एकड़ में बैगन और टमाटर की खेती की तैयारी कर रहे हैं?
2: 10 से 12 एकड़ में है, पूरा बाउंड्री किए हुए हैं।
1: अच्छा, इसका घेरावा आप किस तरह से दिए हुए हैं? सबसे पहले कहा है कि
2: जाली मारे हैं।
1: तो आप बताएंगे कि बैंगन की जो खेती है सो 10 से 12 एकड़ में आप कितने भाग में उसे बैंगन की खेती करेंगे?
2: दो
1: पूरा में?
2: एकड़ में,
1: 2 एकड़ में?
2: 2 एकड़ में है।
1: दो एकड़ में है। उसके बाद जो है सो इसके बाद आप शेष जमीन में आप टमाटर की खेती करेंगे।
2: टमाटर
1: तो बैंगन की खेती की जो आप शुरुआत किए हैं तो बैंगन का जो आप नर्सरी किए हैं सो किस तरह से किए हैं और इसका किस विधि से आप इसको अच्छी तरह से तैयार किए हैं?
2: इसको तो पोलियोस में किया जाता है, दाना देते हैं तो पोलियोस में तैयार करके देता है वही 30 से 35 दिन में।
1: अच्छा, तो पोलियोस में आप किस तरह से किए हुए हैं?
2: जैसे हम लोग एक पैकेट में दाना रहता है 2000, ठीक है?
1: हाँ हाँ।
2: 2000 में वो लेता है 70 पैसा लेता है करने का।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो वो अपना 70 रुपये पैसा लेता है एक दाना का, अब जितना हम लोग लिए उतना वो पैसा जोड़ के लेगा।
1: अच्छा, तो आप वहाँ देखे हुए कि जब पॉली हाउस में जब उसका नर्सरी किए हुए हैं वहाँ के जो भी होंगे तो प्रो ट्रे में किए हैं या फिर नर्सरी में किए हुए हैं, जमीन में किए हुए हैं?
2: नहीं नहीं, वो नर्सरी है, हाँ। है मतलब ट्रे में करते हैं। अच्छा, पॉली हाउस में?
1: पॉली हाउस में करते हैं। तो क्या आप लगभग उसका दूरी क्या होगा जहाँ से आप ला रहे हैं?
2: लगभग वही है 50 किलोमीटर।
1: 50 किलोमीटर में लाने के बाद किसी भी तरह से आपका गाछी का नुकसान तो होता नहीं है या फिर टूट गया या फिर?
2: नहीं, वैसा नुकसान नहीं होता है। अच्छा, सब कैरेट में आता है।
1: तो आप जब पॉली हाउस से बैंगन की गाछी को आप लगा दिए यहाँ लाके, तो इसके पहले जो है सो आप लगाने के पूर्व किस तरह का तैयारी आप जमीन में किए हुए हैं, कैसे आप इसका जोताई किए हैं?
2: जोताई करवाना पड़ता है 3 से 4 बार।
1: अच्छा।
2: उसके बाद है कि 2-3 बार खोखराहा से रोटर से 2-3 बार करके, उसके बाद पांत करके भोकचो मार के सल्फेट गिरा के।
1: तो पांत आप किस मशीन से बनाए हैं या फिर
2: ट्रैक्टर से?
1: ट्रैक्टर से बनाए हैं। तो क्या उसका यंत्र होगा बनाने के लिए, पांत बनाने के लिए?
2: हाँ, दूरी रहता है 2 फीट का।
1: 2 फीट का दूरी होता है। हाँ। तो एक बैगन के पौधे से दूसरे बैगन के पौधे की दूरी क्या है?
2: 2 फीट।
1: 2 फीट रखे?
2: 1.5 से 2 फीट।
1: 1.5 से 2 फीट रखना पड़ता है। और 5 से 5 की दूरी?
2: वही 2 से 2.5 फीट।
1: 2.5 फीट। तो अक्सर देखा जाता है संतोष जी कि बरसात में बैंगन की खेती किसान बंधु के लिए बहुत मुश्किल होता है करना, तो आप जब लगाए तो आप कैसे अभी तक सुरक्षित रख पाए हैं?
2: सर देखिए, दवा बहुत तरह के डालना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, वर्षा जैसा होता है वैसा दवा चलाना पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, खर्चा भी बहुत।
1: तो जैसे आप शुरुआत में इस पौधे में कौन सा दवा दिए हैं जो आपका जो है बैंगन का पत्ता बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल चमक है उसमें?
2: हम तो दिए थे ऐसे में लेनेबो दिए थे, उसके बाद टेस्टर चलाए हैं, उसके बाद अभी करेंट मैजिक अनुदान को यही सब डाल रहे हैं।
1: तो इसका मात्रा क्या होगा देने का, आप कितना मात्रा में देते हैं, छिड़काव करते हैं?
2: लीटर के हिसाब से दवा डलाता है।
1: हाँ हाँ।
2: टंकी रहता है 18 लीटर का भी रहता है, 200 लीटर का रहता।
1: अच्छा,
2: है।
1: अच्छा, उसी में आप जितना ml चाहिए डाल देते हैं।
2: हाँ, 15 लीटर का दवा हम लोग बनाते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: डालते
1: तो आप दवा का प्रयोग अभी कर चुके हैं उसके

0: के बाद आप जो है सो इसमें खाद जो देंगे, कौन सा खाद देंगे आप?
1: खाद चलेगा वही, DAP चलेगा, कैल्शियम चलता है, पोटास चलता है, जैम चलता है,
0: इसकी निराई गुड़ाई कितने दिन में कर देंगे आप?
1: वही जैसे गाछी रोपे उसके बाद 20 दिन में खुरपी हो जाना चाहिए,
0: अच्छा,
1: और वही 30 से 35 दिन में पास चढ़ जाना चाहिए।
0: तो संतु जी आप जिस जगह खेती कर रहे हैं बिल्कुल जंगल के बगल में है, तो क्या खरपतवार आपको परेशान नहीं करता है, घास
1: नहीं,
0: फूस नहीं आता है?
1: घास तो बहुत है।
0: अच्छा, तो इसके लिए आप कौन सा प्रयोग किए हैं जो घास को आप यहाँ से?
1: अभी तो घास वाला दवा प्रयोग नहीं किए हैं,
0: अच्छा,
1: और करना पड़ेगा लग रहा है।
0: तो जिससे अगर पौधे में अगर अगल बगल में घास अगर आ जाता है तो क्या उस घास से उस पौधे को नुकसान नहीं है?
1: घास यदि बढ़ जाता है तो नुकसान तो है, भले दवा देना पड़ता है घास वाला।
0: अच्छा, तो क्या जिसे आप घास का दवा जब देंगे तो उस घास के प्रभाव से पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है?
1: नहीं,
0: नहीं।
1: नहीं।
0: तो आप जो इतने बड़ा रकबा में लगाए हुए हैं तो बरसात का समय है तो क्या जिस तरह से टमाटर में आप खूंटा देते हैं
1: हाँ, खुट्टा देते
0: तो
1: हैं।
0: क्या इस तरह से जब आप इस निराई गुड़ाई के बाद पास देंगे तो पौधा को उसी तरह छोड़ देंगे आप?
1: हाँ, पौधा बिल्कुल पास देल के बाद उसमें खाली दवा चलेगा, बाकी
0: हाँ,
1: बाद फिर 40 से 50 दिन में बैंगन तोड़ाई चालू हो जाएगा।
0: मैंने लगाने से लेके 40 से 50 दिन जब हो जाएगा तो बैगन का तुड़ाई शुरू हो जाएगा। तो बहुत ऐसे किसान होते हैं जो बैगन लगा के बहुत परेशान हो जाते हैं, वो कितना ही कीटनाशक दवा मारते हैं पर उनका बैगन सुरक्षित नहीं रह पाता है, पत्ता से लेके उनके फल तक। तो अगर आप रासायनिक दवा का प्रयोग करेंगे तो क्या फूल और फल में नुकसान हो सकता है?
1: जी,
0: तो उसको आप कैसे सुरक्षित रखेंगे जो जो रासायनिक दवा का प्रयोग करेंगे आप, ताकि फूल और फल हमारा दोनों सुरक्षित रहे?
1: वो देखने से पता चलता है, देखते हैं जैसा सिचुएशन रहता है वैसा हिसाब से, उस हिसाब से दवा चलाते हैं हम लोग।
0: जब फल आना शुरू होता है संतोष जी तो उसमें लगता नहीं है कि इसमें कीटाणु प्रवेश करता है, पर
1: अंदर
0: क्या
1: से
0: है
1: कीटाणु प्रवेश
0: आखिर
1: होता है।
0: कैसे प्रवेश हो जाता है, उसको आप कैसे बचाएंगे उस फल को, कारण कि बरसात के?
1: बैंगन में है ये कि बाहर से कीटाणु कम लगता है, अंदर से जो है सब अपने आप वो पैदा लेता है,
0: अच्छा,
1: अंदर से ही पिल्लू मतलब पनकता है।
0: तो उसको बचाने के लिए कौन सा प्रयोग किसान बंधु करेंगे जैसे आप कर रहे हैं?
1: बहुत तरह के दवा है, टेस्टर है, क्रोन है, सीमोडिस है, सिनोआ है, करेंट मैजिक अनुदान है,
0: अच्छा,
1: सीमोडिस लार्वेटर है, बहुत तरह का
0: तो
1: दवा
0: जैसे
1: है।
0: आप शुरू से जब खेती करेंगे लगाने के समय से फल तैयार होने तक इसमें आप कितने बार प्रयोग करेंगे, तो आपको लगेगा कब, कैसे लगता है कि इसमें हमको दवा का प्रयोग अब करना चाहिए, हमारे पौधा को नुकसान दे रहा है कीटाणु?
1: पौधा का पत्ता झुलसने लगता है यदि उसमें कीड़ा घुस जाता है तो,
0: अच्छा,
1: और
0: ऊपर का जो गाभा होता है झुक जाता है?
1: झुक जाता है, गाभा भी झुकता है, पत्ता भी झुकने लगता है, और फल में अपने तो छेदा दिखता है, फिर फल
0: हाँ
1: को भी
0: हाँ
1: छू के देखते हैं हम लोग
0: तो आपको लगता है कि हमारा पौधा को कीटाणु
1: नुकसान हो
0: नुकसान
1: रहा
0: दे
1: है।
0: रहा है।
1: हाँ,
0: तो उसके बाद जो है सो आप जब तुड़ाई करेंगे फूल फल, जब 50 दिन बोले आप कि 50 दिन में फल आना शुरू हो जाता है, तो जितने बड़े रकबा में आप लगाए हुए हैं तो क्या आप अपने से ही हर बाजार को ले जाते हैं या फिर व्यापारी को आप देंगे? हाँ
1: अपने से तो संभव नहीं है,
0: हाँ
1: व्यापारी से बात करते हैं, गाड़ी से उठा के यहीं से ले जाएगा।
0: अच्छा, तो आपका एक टारगेट होता है, आपका एक अनुमान उम्मीद होता है कि आप जो है सो इस 50 दिन में आप क्या, आपकी उम्मीद है कि आप कितना आमदनी कमा पाएंगे,
1: कमा भी सकते
0: एक
1: हैं।
0: अनुमान होता है कि आप इसके पूर्व में खेती किए हैं, आपके पास जो अनुभव है खेती करने का, उसके बाद आपको ये महसूस होता होगा कि, पर क्या है कि एक अनुमान होगा कि हम इतने फसल को हम इतने एकड़ में इतना लाभ हम कमाना हमारा सुनिश्चित होता है?
1: वैसे सोच के तो कोई लगाता नहीं है,
0: हाँ,
1: बस रह गई कि रेट यदि बढ़िया पकड़ाया टमाटर और बैंगन को तो कमा लेता 2-4 रुपये जो बचता है,
0: हाँ,
1: नहीं तो फिर डूब भी सकता है, बहुत बार डूबे भी हैं।
0: अच्छा, तो आप ये बैंगन की खेती बारे में, आप जो टमाटर, आप टमाटर की खेती भी लगभग 5 से 6 एकड़ में आप तैयारी कर रहे हैं, तो टमाटर के पौधा भी उसी तरह लाएंगे जिस तरह से बैंगन का पौधा लाए हैं, तो उसका जो है सो आप खेत की तैयारी जो है टाँड में लगा रहे हैं, ढाल नुमा है, इसका तैयारी आप कैसे कर रहे हैं कि आप टमाटर इसको इस झोरा में लगाएंगे, क्या विधि से लगाएंगे आप?
1: इसको जोताएंगे 2-3 बार, उसके बाद पांत करवाएंगे, फिर रेजी से रोपाते हैं।
0: अच्छा, तो क्या जिसे एक चीज आप ध्यान देते होंगे संतोष जी कि जब प्रो ट्रे में आप जब लाते हैं तो पौधा को किस तरह से सुरक्षित निकालते हैं ताकि मिट्टी उसमें जो खाद छोड़ नहीं दे?
1: पौधा का जो उसका डंटी रहता है उसको पकड़ के निकालिएगा, वो अपने सुरक्षित निकल।
0: अच्छा अच्छा

0: मैंने ब्लेड से काटने का जरूरत है उसको
1: नहीं, कुछ नहीं,
0: नहीं
1: उसको खाली उसको हल्का सा पकड़ के पुश कीजिएगा, वो अपने निकल जाएगा।
0: हाँ हाँ, तो मैंने कि लगभग जो है सो एक एकड़ में आपका कितना पौधा का टारगेट होता है टमाटर का, कि हम एक एकड़ में लगा पाते हैं सो कितना पौधा आ जाता
1: है? वही 2500 से 2800 एकड़ में गाछ लगता है।
0: अच्छा अच्छा, तो उसका जो है सो पौधे से पौधे का दूरी क्या रहेगा और पांच से पांच का दूरी क्या रहेगा? कारण कि
1: बैगन कहीं जस्ट।
0: अच्छा, तो जिस तरह से बैगन को आप छोड़ देते हैं बिना खुट्टा का, तो टमाटर में तो खुट्टा आपको देना ही पड़ेगा?
1: नहीं, टमाटर में तो खुट्टा देना पड़ेगा, टमाटर बिना खुट्टा का हो भी गा नहीं।
0: तो प्रत्येक टमाटर में आप खुट्टा देते हैं या फिर
1: चार गाछ पर?
0: चार पौधे यानी चार पेड़ आपका तैयार हो गया है तो उस पर आप एक बांस का खुट्टा दे देते हैं। उस खुट्टे का जो हाइट रहता है, उसका लंबाई रहता है, क्या रहता है? कारण कि बरसात का टमाटर तो बढ़वार उसका ज्यादा होता है।
1: 6 फीट रहता है खुट्टा का लंबाई।
0: अच्छा अच्छा,
1: चौड़ाई वही 2 इंच रहता है।
0: अच्छा, 6 फीट आपका लंबाई हो गया 2 फीट, ताकि जो है सो एक टमाटर में जो है अनुमानित फल देने का क्या टारगेट होता है, क्या उम्मीद होता है कि एक पौधे में कितना फल आपको दे देता है कि उसका वजन सह ले?
1: 8 से 10 केजी का रहता है।
0: 8 से 10 केजी का टारगेट रहता है आपका कि हमारा पौधा उतना दे दे। तो संतोष जी, आप हमारे किसान बंधु को बहुत सुंदर बहुत बढ़िया जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: तो देखा किसान भाई ने अभी जो बताओ लग रहा थी कि लीज पर जमीन लेके टमाटर और बैंगन किस तरह से खेती करती हैं और किस विधि से करती हैं, सीधी वैज्ञानिक विधि से करती हैं, उसके बाद कौन सा खाद डालती हैं, कैसे निराई गुड़ाई करे के चाहिए। अब हम इनके पास समय है कि हम बता दे रही है बाजार भाव कि लाल आलू जो है से 20 से 25 रुपये प्रति किलो है, सफ़ेद आलू 15 रुपये से 20 रुपया प्रति किलो, प्याज 30 से 40 रुपये किलो, फूलगोभी 50 रुपये से 60 रुपये प्रति किलो है, पत्ता गोभी 40 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो है, पटल 30 से 40 रुपये प्रति किलो है, भिंडी जो है 15 से 20 रुपये प्रति किलो, नेनुआ 10 से 15 रुपये प्रति किलो है, कद्दू 10 रुपये से 15 रुपये प्रति किलो, और हरा मिर्च 80 रुपये से 100 रुपये प्रति किलो है, शिमला मिर्च 40 से 50 रुपये प्रति किलो है, गाजर 30 से 40 रुपये प्रति किलो है, और बीट 30 से 40 रुपये प्रति किलो है, सेम जो है 60 से 80 रुपये प्रति किलो है, बीन 30 से 40 रुपये प्रति किलो है, मूली 20 से 30 रुपये प्रति किलो है, एक बाद अदरक जो है से 100 से 120 रुपये प्रति किलो है, खीरा 15 से 20 रुपये प्रति किलो है, टमाटर 30 से 35 रुपये प्रति किलो, लाल साग जो है से 20 से 30 रुपये प्रति किलो है, और पालक साग 20 से 30 रुपये प्रति किलो है। तो आज के जो अधिकतम तापमान है किसान भाई बहन वो बता दे रही है कि 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है और न्यूनतम जो है से 26 डिग्री सेल्सियस है, आर्द्रता जो है नमी है से 79% है, और कल के जो तापमान रहता है अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। तो यह जानकारी के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम से हमारा जसमेंद्र के विदा लेवे के समय हो गया है, तो कार्यक्रम से हमारा विदा देदा जोहार।

0: आप सुन रहे थे खेती बारी, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी रहा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी ने आज अहम बैठक की, जिसमें मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने और आगामी दिनों में आंदोलन तेज करने की रणनीति पर विचार किया गया। राज्य में एसआईआर के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सुधार के लिए 24 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी, ताकि कोई पात्र नागरिक सूची से ना छूटे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सोरेन सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं की 31% राशि खर्च करने में पूरी तरह विफल रही है। हजारीबाग के उपायुक्त के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक संदिग्ध विदेशी नंबर से अधिकारियों को संदेश भेजे जा रहे हैं और जो साइबर ठगी का प्रयास है। उपायुक्त ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और कोई भी वित्तीय जानकारी साझा न करने की अपील की है। साहिबगंज में उपायुक्त दीपक दुबे की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और तय मानकों के अनुरूप समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। नवल टाटा हॉकी झारखंड सब जूनियर स्टेट चैंपियनशिप का खिताब एनटीएचए ने खूंटी को 5-2 से हराकर जीत लिया है। रांची की टीम सिमडेगा को हराकर तीसरे स्थान पर रही। एनटीएचए आज से 14 अगस्त तक जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी भी कर रहा है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

नमस्कार युवा साथियों, अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती का कर लीजिए स्वीकार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आज। इस खास अवसर पर आप सभी को आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी से मैं सीधे नमस्कार और ढेरों शुभकामनाएं भेज रहा हूं। युवा सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं है साथियों, युवा तो वह शक्ति है जो देश की दिशा और दशा बदलने का सामर्थ्य रखती है। आज का भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे हमारे युवाओं को ऊर्जा, उनकी सोच, उनका साहस और उनके सपने सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन याद रखिए युवा साथियों, देशभक्ति केवल नारों से नहीं, हमारे कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। देश के सम्मान की रक्षा करना, ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाना, साथ ही चुनौतियों के सामने न झुकना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना, यही सच्ची युवा शक्ति है ना। और इसी जज्बे को आवाज दे रहा है हमारा ये पहला गाना जो कार्यक्रम के आरंभ में हमने रखा है। उसमें एक संकल्प है, एक विश्वास और मातृभूमि के प्रति है अटूट प्रेम। न झुकेगा देश अपना, न झुकेंगे हम कभी। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश के हर युवा के भीतर के उसी साहस और स्वाभिमान को सलाम करते हुए सुनते हैं ये जोशीला गाना। सुनिए और महसूस कीजिए उस जज्बे को जो कहता है, जिंदगी का क्या किया जो सर उठाकर मर न पाए, हो गया वो खून पानी जो वतन पे न बहा। सुनिए ये गीत और आज युवाणी में हम सभी इसी युवा शक्ति, जुनून और इसी जिम्मेदारी पर आगे भी चर्चा

आज की तारीख है 12 अगस्त की। आज का दिन दुनिया भर के युवाओं के नाम है। आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। भारत के कोने कोने में गांव से लेकर शहर तक, कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक, खेल के मैदान से लेकर प्रयोगशालाओं तक युवा अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले दुनिया के तमाम साथियों को एक साथ कहें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। लेकिन सवाल ये कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि युवा केवल किसी देश की आबादी का एक हिस्सा नहीं है, युवा किसी भी समाज की ऊर्जा है, कल्पना है, साहस है और भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 12 अगस्त को युवाओं से जुड़े मुद्दों, उनकी चुनौतियों और उनके योगदान को दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश को मंजूरी दी और पहली बार यह दिवस 2000 में मनाया गया। और इस वर्ष की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एप्रिसिएशन, यानी परिस्थितियां भले अलग हों, देश अलग हों, भाषाएं अलग हों, संस्कृतियां अलग हों, लेकिन दुनिया के युवाओं के सपने बहुत हद तक एक जैसे हैं। सम्मान चाहिए, अवसर चाहिए, अपनी बात कहने का अधिकार चाहिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का मौका चाहिए। युवा साथियों, याद रखिए, उम्र छोटी हो तो क्या, हौसला बड़ा होना चाहिए। मंजिल चाहे दूर हो, सफर खड़ा होना चाहिए। युवा होना सिर्फ उम्र का नाम नहीं है। युवा होना नई सोच रखना, गलत के सामने आवाज उठाना, असफलता के बाद फिर से खड़ा होना और अपने हुनर को पहचानना, और सबसे बड़ी बात, अपने देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखना। आज का युवा मोबाइल चलाता है, इंटरनेट चलाता है, दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे अपने विवेक को भी साथ लेकर अब चलना होगा। सोशल मीडिया पर सिर्फ समय बिताने वाला युवा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सकारात्मक बदलाव के लिए करने वाला युवा देश की असली ताकत बनेगा। युवा साथियों, नशे से दूर रहने वाला युवा, अफवाह से बचने वाला युवा, नफरत के बजाय भाईचारा को चुनने वाला युवा और अपने काम को ईमानदारी से करने वाला युवा, यही भारत का भविष्य है। जो ठान लिया वो करके दिखाएंगे, मुश्किलों से हम कभी ना घबराएंगे। हम हैं युवा भारत शक्ति की, नया इतिहास हम लिख जाएंगे। और साथियों, आज का यह दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हम सब मिलकर मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त, भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस। जी हां, 80वां स्वतंत्रता दिवस। जरा सोचिए, जिस आजादी को पाने के लिए असंख्य लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उस आजादी के 80वीं वर्षगांठ के सामने आज भारत का युवा खड़ा है। भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया? राजगुरु, सुखदेव और असंख्य युवा क्रांतिकारियों ने किस उम्र में अपनी जीवन की परवाह किए बिना देश को सर्वोपरि माना? जी हां, उनके पास आज के युवाओं जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके पास था हौसला, संकल्प और मातृ

0: भूमि के लिए जुनून। इसलिए आज हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि आजादी हमें मिली है, लेकिन इस आजादी को मजबूत बनाने के लिए हम आखिर कर क्या रहे हैं युवा? क्योंकि देश की रक्षा केवल सीमा पर बंदूक लेकर खड़े रहने से सैनिक नहीं करते। एक युवा मेहनत से पढ़कर भी देश की सेवा करता है, एक वैज्ञानिक नई सोच करके भी देश की सेवा करता है, एक खिलाड़ी तिरंगे को दुनिया के मंच पर ऊंचा करके भी देश की सेवा करता है, एक युवा ईमानदारी से अपना काम करके भी देश की सेवा करता है, और कोई युवा किसी जरूरतमंद या उसका हाथ थामकर भी देश की सेवा करता है। इसलिए तिरंगे की शान में जो अपना मान रखता है, वही सच्चा युवा भारत की पहचान रखता है। मैं तो बस यही कहूंगा युवा साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर सिर्फ उत्सव मत मनाइए, एक संकल्प लीजिए कि हम अपने सपनों को बनाएंगे बड़ा और हम अपने चरित्र को मजबूत बनाएंगे, हम नफरत नहीं भाईचारा फैलाएंगे, हम नशे और बुरी आदतों से दूर रहेंगे, हम अपने हुनर को देश की ताकत बनाएंगे, और आने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने शहीदों से यही कहेंगे, आपने आजादी हमें सौंपी थी, अब इसे और मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और अंत में इस चर्चा में शहीदों की कुर्बानी को कभी बेकार न जाने देंगे, तिरंगे की आन को कभी झुकने न देंगे। युवा है तो हिंदुस्तान की ताकत बनेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही है आज की युववाणी का संदेश। मैं माणिक चक्रवर्ती आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से जुड़ा हुआ हूं आपके साथ लाइव। आप सभी युवा साथियों को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जुड़े रहिए आकाशवाणी से, जुड़े रहिए अपने इस कार्यक्रम युववाणी से, और जुड़े रहिए अपने देश से। जय हिंद, जय भारत।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: कार्यक्रम युववाणी में अब आगे अपने युवा श्रोताओं को एक भेंटवार्ता सुनवाने जा रहा हूं। विषय है मेडिकल के क्षेत्र में कैरियर तलाश रहे युवाओं के लिए बेहतर विकल्प, BMLT कोर्स। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर रणबीर कुमार कर्ण एवं रामानुज शर्मा, और इनसे बातचीत कर रही हैं हम सबके लिए श्वेता रानी।
9: दोस्तों, जीने के लिए भोजन पानी की आवश्यकताओं की तरह ही आवश्यक है हमारा स्वस्थ बने रहना भी। आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी लाइफस्टाइल में हम एक स्वस्थ दिनचर्या के अभाव में कई तरह की बीमारियों के शिकार अक्सर होते ही रहते हैं। ऐसे में जरूरत होती है कई शारीरिक जांचों से लेकर बेहतर इलाज की। मेडिकल क्षेत्र में एज ए लैब टेक्नीशियन के रूप में करियर की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर है BMLT यानी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम इसी कोर्स से संबंधित विस्तृत जानकारियां हासिल करते हैं मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर और BMLT के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रणधीर कुमार कर्ण जी से। तो सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
10: धन्यवाद
9: सर। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि BMLT ये किस तरह का कोर्स है?
10: ये कोर्स जो है वो मेडिकल से रिलेटेड कोर्स है, बैचलर कोर्स हमारे यहाँ चलता है BMLT, और यह मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें जितने भी बॉडी के फ्लूड का टेस्ट होता है वो टेस्ट हम लोग सिखाते हैं, यहाँ पर बच्चे लोग टेस्ट करना सीखते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेडिकल जो टीम होती है डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर के टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जो ये कोर्स कर लेते हैं तो वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो जाते हैं, तो वो उस टीम के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेंबर हो जाते हैं। डॉक्टर जो भी इलाज करते हैं हमेशा आजकल डॉक्टर एक टेस्ट लिखते हैं और टेस्ट के जो ऑथेंटिसिटी है उसी पर वो इलाज करते हैं। तो टेस्ट अगर सही सही होगा तो इलाज भी सही होता है, टेस्ट गलत हो गया तो इलाज भी गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है सभी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग लैस है। यहाँ पर जितने भी ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हो गया और जितने फ्लू टेस्ट, बॉडी का फ्लू टेस्ट होता है, सभी टेस्ट हम लोग सिखाते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं इस फील्ड में आने के लिए। प्रॉस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है हमारे बच्चों के लिए। ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर लेबोरेटरीज हैं, पैथोलॉजी की लेबोरेटरी, हमारे बच्चे ही पास और बच्चे ही सब जगह आपको मिलेंगे। यहाँ से पास होने के बाद इनका झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर पास आउट होने के बाद। तो ये बीएमएलटी हमारा जो है 2019 सेशन से शुरू हुआ है, अभी तो एक भी बैच नहीं निकला है। जो हमारे सीनियर मोस्ट बैच है वो सेमेस्टर 4 में भी गए हुए हैं। ये जो यहाँ से पास करेंगे सेमेस्टर 6, तब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में। उसके बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं, अपना लैब भी चला सकते हैं, किसी लैब में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, बहुत सारे जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं सभी में, ब्लड बैंक हुआ, रेड क्रॉस हुआ, सब जगह ये काम कर सकते हैं।
6: गवर्नमेंट जॉब में भी क्या एलिजिबल होते हैं सर?
10: बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब में भी एलिजिबल है। जो पैरामेडिकल काउंसिल में जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया वो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब सभी जगह के लिए वो योग्य हो जाते हैं।
6: तो हम जानना चाहेंगे सर कि बीएमएलटी के कोर्स को करने के लिए इसकी न्यूनतम अर्हता क्या होती है इसमें एडमिशन लेने के लिए?
10: इनकी न्यूनतम अर्हता है कि साइंस स्ट्रीम से उनका इंटरमीडिएट होना चाहिए या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स जो किए हुए हैं एमएलटी में, मैट्रिक के बाद भी अगर किए हुए हैं 1 ईयर कोर्स तो उनका भी एडमिशन होता है साइंस स्ट्रीम से।
6: साइंस स्ट्रीम मतलब होना नेसेसरी है इसमें, चूंकि मेडिकल लाइन है तो इसमें साइंस होना तो जरूरी है ही। हम जानना चाहेंगे कि सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स, ये तीनों में किस किस तरह के अंतर होते हैं?
10: ये हमारे यहाँ जब एडऑन कोर्स मोड में चलता था उस समय ये सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा था, जो कि यूजीसी से इसको मान्यता मिली हुई थी। और वो कोर्स जो था वो हमारे ऑनर्स के बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में ऑनर्स पढ़ते थे वो साथ में वो करते थे। लेकिन अब बीएमएलटी में ऐसी कोई बात नहीं है, अब इसमें कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा का कोई इसमें नहीं है। अब डायरेक्ट वो 6 सेमेस्टर का कोर्स करेंगे जो कि एकदम प्योरली एमएलटी से रिलेटेड होगा। और डिप्लोमा कोर्स वही करते हैं जो झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कुछ कॉलेज है जिसको एफिलिएशन वो देते हैं, वो डिप्लोमा 2 साल का करवाते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि उनमें केवल रजिस्ट्रेशन होता है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी हमारा विनोबा यूनिवर्सिटी ही लेता है एग्जामिनेशन। तो जब यहाँ पर 6 सेमेस्टर के बाद जब पास कर जाएंगे बच्चे हमारे तो विनोबा भावे का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो डिप्लोमा कोर्स यहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं होता, वो झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल का जो डायरेक्ट एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें होता है डिप्लोमा।
6: डीएमएलटी और बीएमएलटी दोनों कोर्सेज में किस तरह के अंतर है?
10: ऑलमोस्ट वही सब सिखाया जाता है लेकिन उससे एक एडवांस डिग्री हो गया। ये डिप्लोमा का मतलब होगा डिग्री नहीं हुआ, और ये जो बीएससीएमएलटी होगा ये डिग्री कोर्स हो गया। तो एक ईयर एडिशनल पढ़ते हैं उसमें इंटर्नशिप इनका है, तो वही सब लेकर के 1 साल और बढ़ जाता है इनका इंटर्नशिप में।
6: ये बीएमएलटी कितने साल का कोर्स होता है सर?
10: ये 3 इयर्स डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर्स, 6 सेमेस्टर में होता है ये कोर्स।
6: अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे किसी सेमेस्टर में वो पास नहीं हो पाते हैं, उनका कुछ कम नंबर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें किस तरह की छूट दी जाती है या फिर अगले सेमेस्टर में जाने के लिए क्या कुछ उन्हें करना होता?
10: जो हमारे विनोबा यूनिवर्सिटी का जो रेगुलेशन है उसके अनुसार बच्चे अगर 2 सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं या एबसेंट हो जाते हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन उनको उस सेमेस्टर में जिसमें वो या फेल हो गए हैं या एबसेंट हो गए हैं उनको क्लियर करना पड़ता है अगले एग्जामिनेशन में, लेकिन प्रमोटेड हो जाते हैं।
6: सर आपने इसमें कहा कि बीएमएलटी कोर्स में आप शरीर के जो भी विभिन्न अंग हैं उनसे रिलेटेड जांच को आप सिखाते हैं, तो जांच के लिए किस किस तरह की बातों को ध्यान देना चाहिए?
10: जांच में जो जितना भी ब्लड फ्लूड हमारा है उसकी जांच होती है। इसमें अगर ज्यादा अच्छा होगा हमारे लैब टेक्नीशियन जो है अगर उनसे भी आप जरा पूछ लें वो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे।
6: बिल्कुल, मैं उनसे भी जानकारियां लेना चाहूंगी। सर इसमें फी का प्रोसेस क्या है और कितनी फी लगती है टोटल कोर्स को करने में?
10: हमारा जो है चूंकि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में ये वोकेशनल बोर्ड में है, फी बहुत ही कम है, 15,000 एक सेमेस्टर का, प्रति सेमेस्टर 15,000, 6 सेमेस्टर है तो 90,000 इसका हो गया पूरे 3 साल का, 90,000 इसका फी होता है। और बच्चे हमारे ओबीसी के हैं या एससीएसटी के हैं तो कल्याण विभाग से ये रियम्बर्स भी हो जाता है,
6: स्कॉलरशिप उन्हें मिल जाती है,
10: मिल जाती है उनको कल्याण विभाग से झारखंड सरकार के द्वारा। एमएलटी का अलग से पुस्तकालय है हमारा, बीएमएलटी से रिलेटेड सब बुक्स में कुछ बायोलॉजी का भी जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का भी बुक्स है और बीएमएलटी का पूरा बुक्स है, एकदम तरह का भी टेस्ट होता है, सभी टेस्ट के बारे में कैसे जानकारी मिले बच्चों को करें और जाके पढ़े भी, पढ़े और फिर करें तो वो सुविधा यहाँ पर है।
6: ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही सर, जो बच्चे बुक्स को लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं। बीएमएलटी के विद्यार्थियों को जांच से रिलेटेड किस तरह की बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें बेहतर तरीके से ट्रेंड होना चाहिए इस बारे में विस्तार से आइए हम जानते हैं यहाँ के लैब टेक्नीशियन रामानुज शर्मा जी से। तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
11: जी नमस्कार, मैं लैब टेक्नीशियन रामानुज शर्मा। हमारे यहाँ 10 पार्ट में हम लोग 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियो, फिजियोलॉजी, सीरोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हर एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा बारीकी से इनके बारे में अध्ययन करना और क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करते हुए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग हिमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो नॉर्मल वैल्यू से हल्का सा

0: गलत करते हैं, थोड़ा ज्यादा आ जाता है, थोड़ा कम आ जाता है, जो कि पेशेंट के जिंदगी का सवाल होता है। इस तरह से हम लोग क्वांटिटी भी मेंटेन करते हैं, क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, हम लोग साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं ताकि हमारे बच्चे जब कल कहीं जाएं तो उन्हें दिक्कत नहीं हो।
1: तो क्वालिटी और क्वांटिटी में किस तरह के ध्यान देने की बातें आप उन्हें बताते हैं?
0: क्वालिटी में एरर होने का हम लोग माइक्रोपिपेट चलाते हैं, जहां तक हम लोग केमिकल रिएक्शन का बात करते हैं तो माइक्रोपिपेट में हम लोग बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हैं, प्लस केमिकल का एक्सपायर डेट और अच्छे से केमिकल यूज करने के लिए हम लोग तुरंत पैकेट खोलते हैं, अगर खराब होने का चांस रहता है तुरंत उसको हम लोग फेंक देते हैं, मतलब हर एक चीजों को हम लोग बारीकी से ध्यान देते हैं और उस पर काम करते हैं।
1: कई बार ऐसा होता है सर, बहुत सारे अलग अलग जो लेबोरेटरीज होते हैं, जांच घर होते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ जैसे ब्लड टेस्ट करवाना हो, यूरिन टेस्ट करवाना हो, थायराइड वगैरह का जांच करवाना होता है, शुगर टेस्ट वगैरह करवाना होता है, तो हर एक लेबोरेटरी में अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स आते हैं, उसके क्या कारण?
0: सबसे बड़ा कारण यह है कि वो मेंटेन टेस्ट प्रोसीड्योर को फॉलो नहीं करते हैं। टेक्नीशियन कहीं से भी पढ़ के आ जाते हैं, केवल डिग्री खरीद ले, उन्हें प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। और साफ सफाई, जिसको क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर, लोग इसको हल्का में ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब गंदा है उसी तरह से काम करने लगे क्योंकि पैसा बचता है। हम लोग सब कुछ नया टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, कोई भी चीज को पूरा नया यूज करते हैं, ये कोई छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर यदि हम लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, हर एक चीज को क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर को बच्चों को लगभग 10 दिन तक समझाते हैं क्योंकि गलती नहीं हो, और जितने भी लैब हैं वहां के टेक्नीशियन को क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर से रिलेटेड और साफ सफाई से रिलेटेड उनके पास थ्योरी का नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण एरर होने का चांस रहता है। तो लैब में काम करते हुए सिर्फ प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर के साथ साथ क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर और हम सामान को कैसे यूज करें, जिसके कारण एक पॉइंट भी अंतर हो जाता है और पेशेंट का लाइफ का सवाल हो जाता है, जिसके कारण डॉक्टर भी कंफ्यूज कर सकते हैं और अंत में एक पेशेंट का जान चला जाता है। दूसरा चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अगर यदि आपके पास कोई भी तरह का टेंशन हो या दिमाग में किसी भी तरह का प्रेशर है तो आप उस लैब के बाहर छोड़ करके आए। तीसरी चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जितना भी अपरेटस है, जितना भी सामान है, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए। आजकल पैसा बचाने के चक्कर में वो टेक्नीशियन को कम पैसा देने के चक्कर में एक वेल ट्रेंड टेक्नीशियन उनके पास नहीं रहता, उनके पास डिग्री भी नहीं रहता है, वो एक काम करवाते हैं तो उन टेक्नीशियन को क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर पता भी नहीं रहता है। और ज्यादा से ज्यादा लैब में जो काम करते हैं, अगर यदि कहीं होता भी है तो वे फोर्थ ग्रेड के स्टाफ काम करते हैं जिनको ये सब थ्योरी पता नहीं होता है, जिसके कारण ये सब काम उन्हीं को करना चाहिए जो बीएमएलटी टेक्नीशियन हो, डीएमएलटी टेक्नीशियन हो, जिसके कारण लैब में जांच गड़बड़ होना स्वाभाविक है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं ताकि मेरा बच्चा जहां भी जाए यहां तो सही करे ही, वहां जांच में हल्का सा भी एरर नहीं आए, इसलिए ये सब बातों को मार्कहम ऑफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स में विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है।
1: तो जांच के लिए सर किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज करते हैं और उनके नाम क्या क्या?
0: हमारे यहाँ मैनुअल भी है और एडवांस टेक्नोलॉजी का मशीन भी है, हर एक प्रकार का मशीन है ताकि हमारे बच्चों के पास पूंजी कम रहे तो वे लोग मैनुअल भी यूज कर सकते हैं, कम पैसा में भी अपना लैब को खोल सकते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बड़े बड़े मशीनों को भी कैसे चलाएंगे। हमारे यहाँ हर एक तरह का मशीन है, कैलोरी मीटर से लेकर के सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन हमारे यहाँ मौजूद है। हिमेटोलॉजी का अलग मशीन, बायोकेमिस्ट्री का अलग मशीन, माइक्रोबायोलॉजी का, लेमिनर एयर फ्लो से लेकर के हर एक तरह का सुविधा मेरे कॉलेज में मौजूद है। और माइक्रोस्कोप, मोनोक्यूलर, बायनोक्यूलर माइक्रोस्कोप और एडवांस टेक्नोलॉजी का जो माइक्रोस्कोप है, हर एक तरह का सामान हमारे यहाँ है। हम लोग जो केमिकल भी यूज करते हैं, मशीन भी जो यूज करते हैं वो उच्च क्वालिटी का यूज करते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं हो।
1: आपने कहा मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड दोनों तरह के जो जांच होते हैं वो आप सिखाते हैं बच्चों को, ताकि पूंजी का अभाव है वो भी बच्चे अपना लैब खोल सके जांच का। जानना चाहेंगे कि कंप्यूटराइज्ड जो जांच होता है या फिर मैनुअल जांच होता है, दोनों में किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं? और अक्सर ये कहते हुए लोगों से सुना जाता है कि जो कंप्यूटराइज्ड जो जांच होता है वो ज्यादा बेटर होता है अकॉर्डिंग टू मैनुअल, तो इसमें आपका क्या विचार?
0: जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे हम टीसीडीसी का बात करते हैं तो टीसीडीसी में क्या होता है कि सेल का फोटो खींचा जाता है, उसके बाद काउंट किया जाता है कि सेल कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, आरबीसी कितना है। तो कभी कभी मशीन में भी गड़बड़ी होता है, वो दो सेल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, वो गलती से वन काउंट कर देता है और जिसके कारण वो गलती रिजल्ट भी दे देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मशीन भी कभी कभी गलत रिजल्ट देता है, कुछ भी एरर हो सकता है, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब मशीन गलत दे रहा है और मैनुअल से हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे तो एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और एक सटीक रिजल्ट दे सकते हैं। आप माइक्रोस्कोप पर सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं क्योंकि कंप्यूटर से बटन दबा करके वो कोई भी जांच को कर सकते हैं जो कि बहुत आसान होता है, लेकिन हमारे कॉलेज में जोर दिया जाता है किसी भी प्रकार से, जितना भी उसका प्रोसीजर है, हर प्रोसीजर से हमारे बच्चे सीख जाएं ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो।

0: आप दोनों ने बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
1: चलिए आपको धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैम।
3: तो ये थी भेंटवार्ता, विषय था मेडिकल के क्षेत्र में करियर तलाश रहे युवाओं के लिए बेहतर विकल्प BMLT कोर्स। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर रणधीर कुमार कर्ण एवं रामानुज शर्मा। भेंट कर रही थी इनसे, हमारे लिए बातचीत कर रही थी श्वेता रानी। और युवा साथियों, अब हमारी आज की चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाह रहा हूं जो आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकती है। छात्र जीवन में लक्ष्य निर्धारण और सकारात्मक सोच के बारे में। छात्र जीवन केवल किताबें पढ़ने और परीक्षा पास कर लेने का ही समय नहीं होता है, यही वो समय है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। आपने सुना होगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सुना होगा आपने। लेकिन केवल सपना देखना काफी नहीं है युवा साथियों, सपने के साथ लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के साथ लगातार मेहनत। युवा साथियों, सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरी रुचि किस क्षेत्र में है, और अब मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज क्या कर सकता हूं। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिएगा, लेकिन उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिएगा। अगर आपका लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो आज से अपनी पढ़ाई का समय तो तय कर लेना ही होगा। अगर लक्ष्य खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी बनने के लिए नियमित अभ्यास करना होगा। अगर लक्ष्य कलाकार, शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा थोड़ा काम करना होगा। याद रखिए युवा साथियों, बूंद बूंद से सागर बनता है, कदम कदम से सफर बनता है। जो रोज खुद को बेहतर करता है एक दिन वही मुकाम हासिल करता है ना। तो लक्ष्य के साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो है सकारात्मक सोच। जी हां, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी परेशानी आएगी ही नहीं। परेशानियां आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, कभी परीक्षा उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगी, कभी प्रतियोगिता में हार मिल जाएगी, कभी कोई आपकी प्रतिभा पर सवाल उठा देगा, लेकिन उस समय खुद से कहिएगा, मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। असफलता को अंत मत समझ लीजिएगा युवा साथियों, असफलता तो कई बार सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक हो जाती है। गिरकर उठना ही तो जिंदगी की पहचान है, हार के बाद जीत की नई उड़ान है। जो मुश्किलों से डरकर रुक जाए उसके सपनों में कहां पहचान है। आज के युवाओं के सामने एक और बड़ी चुनौती है, तुलना। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिएगा, किसी की मंजिल देखकर अपने सफर को मत कोसिएगा। जी हां, हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है ना युवा साथियों, आपका मुकाबला किसी और से नहीं, कल वाले अपने आप से है। आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, समय। छात्र जीवन में समय सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय आज मोबाइल की स्क्रीन पर बेवजह गुजर गया वो वापस कभी आएगा क्या? नहीं ना। इसलिए मोबाइल आपका साधन बने, आपकी मंजिल नहीं बने। पढ़िए, सीखिए, खेलिए, व्यायाम कीजिए, परिवार और समाज से जुड़िए, अपने हुनर को निखारिए और अपने मन को सकारात्मक रखिए। और अगर कभी मन में निराशा आ जाए तो ट्यून कीजिए आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र, है ना, यहां आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, उन्हें सुनकर के आगे बढ़िए। और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात भी कर लीजिएगा, समस्या को मन के अंदर दबाकर रखने के बजाय उसका समाधान खोजिएगा। युवा साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं आप सबसे सिर्फ एक ही छोटा सा संकल्प चाहता हूं, एक लक्ष्य चुनिए, एक समय सारणी बनाइए, हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए, असफलता से मत डरिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, है ना। क्योंकि लक्ष्य बड़ा हो, सोच नई हो, मेहनत में कोई कमी ना हो, युवा अगर ठान ले दिल से तो देश की तरक्की थमेगा ही नहीं। मैं माणिक चक्रवर्ती आपके साथ इस चर्चा में था, भाग ले रहा था। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से युववाणी कार्यक्रम। और चलते चलते अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपने लक्ष्य पर टिके रहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपका आज ही कल की नींव है। इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी।

तो 15 अगस्त आने से पहले आपके अंदर वो जुनून, वो इच्छा और वो चाहत देश प्रेम की अब आने लगी है। ऐसे में हम आगे आज आपको एक विशेष कार्यक्रम रात्रि 10:30 पर सुनवा रहे हैं। सुनिएगा जरूर कार्यक्रम एक फिल्म से। इसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 शहीद फिल्म के अंतर्गत शहादत, युवा शक्ति और देशभक्ति इस विषय को लेकर के एक फिल्म से सुनवाने जा रहा हूं आज रात्रि 10:30 पर। फिलहाल फिल्म संगीत का ये दौर चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है और अफसाना फिल्म का ये गीत बिल्कुल तैयार आप सबके लिए, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज।

दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आज रात्रि 10:30 पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की रात्रि में और आने वाले 15 अगस्त के लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक फिल्म से के अंतर्गत शहादत, युवा शक्ति और देशभक्ति। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 10:30 पर आप सबके लिए कार्यक्रम एक फिल्म से के अंतर्गत होगा। तो आइए मिलकर सुने ये कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की रात शहादत, युवा शक्ति और देशभक्ति को दीजिए संगीत की इस यात्रा में। चलिए साथ मेरे यानी अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती के। फिल्म संगीत अमिताभ बच्चन और मनहर उदास की आवाजें। फिल्म का नाम तूफान।

0: worry, be happy.
1: मेरे को फोन नंबर देना, मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और बहुत कुछ भी सॉल्व करता हूँ। अपना दूं क्या? 0000001।
2: आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र के श्रोताओं, आज रात 10:30 पर एक फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत 23 मार्च 1931 शहीद फिल्म के गीत सुनवाऊंगा आप सबको। और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, आने वाले एक दिन के बाद, दो दिन के बाद 15 अगस्त भी है। तो शीर्षक दिया हमने इस कार्यक्रम को, शहादत, युवा शक्ति और देशभक्ति। इस विशेष संगीतमय कार्यक्रम को, देशभक्ति संगीतमय कार्यक्रम को अवश्य सुनिएगा आज रात 10:30 पर। तो लीजिए अब फिल्म संगीत का अगला गाना आप सबके लिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: फिल्म संगीत का आखिरी नजराना। बंबई का बाबू, साधना सरगम और कुमार शानू के गाए इस फिल्म के को सुनिए।

बंबई का बाबू, इस फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप सभी कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों में, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर अब यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से, इसे हम रिले करेंगे। शाम 7:15 पर विधानसभा समीक्षा होगी, इसे भी हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले करेंगे। इन सभी समाचारों के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी रहा जारी। दिल्ली में भाजपा सांसदों ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का आह्वान, कहा विकसित भारत के लिए बाल तस्करी और बाल श्रम का खात्मा जरूरी। राज्य में एसआईआर के तहत 311 नए सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियुक्त। मतदाता सूची में सुधार के लिए 24 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर संचालन के लिए गठित होगी 11 सदस्यीय नई कमेटी। महाअधिवक्ता रोहितास्य रॉय करेंगे अध्यक्षता। और एनटीएचए ने खूंटी को 5-2 से हराकर जीता सब जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। रांची की टीम प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। और अब समाचार विस्तार से। रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी रहा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी ने आज अहम बैठक की, जिसमें मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने और आगामी दिनों में आंदोलन तेज करने की रणनीति पर विचार किया गया। झारखंड छात्र आंदोलन पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। रांची में जेपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज दिल्ली में भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि यह लाठीचार्ज राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी पर निशाना साधते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की।
6: बच्चे विधानसभा का घिनाव करने जा रहे थे, राहुल गांधी के इशारे पर हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज गोंजा चलाई गई है। छात्रों का डिमांड है, छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, इस वोटाने का जांच कराने का काम करे कांग्रेस। कांग्रेस का झारखंड में मूवमेंट है, कांग्रेस का दोहरी नीति नहीं चलेगा। झारखंड में ही का मुंह में काला क्यों लगा हुआ।
5: इस बीच कांग्रेस कोटे के मंत्रियों राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री श्री किशोर ने कहा कि सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
7: दिनांक 10/8/2026 को छात्र विधानसभा का घेराव कार्यक्रम को लेकर बाजार में यह चर्चा बनी रही कि भाजपा ने आस पड़ोस के राज्यों से अपने कैडर को बुलाकर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से यह मांग करती कि मामले की जांच कर विधि पूर्वक कार्रवाई वैसे लोगों के विरुद्ध की जाए जो बाहर से आकर हमारे आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश लोगों ने की।
5: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सोरेन सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं की 31% राशि खर्च करने में पूरी तरह विफल रही है।
8: 2019 से 24 के दौरान निष्पादित किए जाने के लिए जो प्रस्तावित थे 1,02,68,484 जो काम था, लेकिन उसमें से मात्र 27,96,044 यानी 27% काम को ही वो पूरा कर। 2019 से 24 तक किसकी सरकार थी? हेमंत सोरेन की सरकार।
5: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर बाल कल्याण संघ के कार्यक्रम में बाल तस्करी और बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार, पंचायत, पुलिस और युवाओं के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ होगा। राज्यपाल ने युवाओं से तकनीक के जरिए जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सुधार के लिए 24 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी ताकि कोई पात्र नागरिक सूची से न छूटे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर झारखंड सहित पूरे देश में भारी उत्साह देखा जा रहा है। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही है। एक रिपोर्ट।
9: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है, इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: इधर हर घर तिरंगा अभियान के तहत रांची के मांडर और लापुंग में भव्य तिरंगा यात्रा और साइकिल रैली निकाली गई। मांडर कॉलेज के एनसीसी कैडेटों और लापुंग में कस्तूरबा विद्यालय के छात्राओं सहित ग्रामीणों ने लोगों को घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए पुरानी समिति को भंग कर दिया है। अदालत ने महाधिवक्ता रोहितस्य रॉय की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय नई समिति के गठन का निर्देश दिया है, जिसमें रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री भी शामिल हैं। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की नई योजना के अध्ययन के लिए यह कदम उठाया है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। 2,20,00,000 रुपए के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादी के पुलिस ब्यूरो सदस्य मिस्र बेसरा सहित 3 हार्डकोर नक्सलियों को 14 दिनों के पुलिस रिमांड के बाद आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि इन नक्सलियों से रांची में NIA, IB और झारखंड पुलिस ने संगठन के नेटवर्क और फंडिंग को लेकर कड़ी पूछताछ की है।
10: अभी तो हम लोग जो लगातार पिछले 13-14 दिन से पूछताछ चल रही थी और पूछताछ में बहुत सारी चीजें सामने आई है, बहुत सारी जानकारियां मिली है, तो उस पर फिर एक अलग से टीम काम कर रही है और अभी चूंकि उनका रिमांड खत्म हो गया है तो उनको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा जा चुकी है।
5: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 16 अगस्त तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज और कल रांची, गुमला, खूंटी और हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना है। विभाग ने इन दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। नवल टाटा हॉकी झारखंड सब जूनियर स्टेट चैंपियनशिप का खिताब NTHA ने खूंटी को 5-2 से हराकर जीत लिया है। रांची की टीम सिमडेगा को हराकर तीसरे स्थान पर रही। NTHA आज से 14 अगस्त तक जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी भी कर रहा है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी रहा जारी। दिल्ली में भाजपा सांसदों ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का आह्वान, कहा विकसित भारत के लिए बाल तस्करी और बाल श्रम का खात्मा जरूरी। राज्य में एसआईआर के तहत 311 नए सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियुक्त। मतदाता सूची में सुधार के लिए 24 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर संचालन के लिए गठित होगी 11 सदस्यीय नई कमेटी। महाधिवक्ता रोहितास्य रॉय करेंगे अध्यक्षता। और एनटीएचए ने खूंटी को 5-2 से हराकर जीता सब जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। रांची की टीम प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 17 आदिवासी लाभुकों के बीच व्यक्तिगत और सामूहिक वन पट्टा का वितरण किया गया। साथ ही इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गढ़वा उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्र ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: प्रकृति का साथ छोड़ना नहीं है, प्रकृति है आपके चलते कि आज हम बैलेंस्ड हैं। आज ही प्रकृति के रूप में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सामंजस्य स्थापित करके अपना विकास करते रहें। जिला प्रशासन आपके साथ है।
1: विश्व आदिवासी दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित गढ़वा पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने भी जनजाति समुदाय के लोगों को मार्गदर्शन किया।
3: जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनसे हम लोग जुड़े हैं, परंतु विश्व में आगे बढ़ने के लिए और अपने देश को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम सबको के लिए आवश्यक है कि हम लोग विज्ञान को अपनाएं, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसको फॉलो करें। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने साथ, अपने गांव के साथ, अपने परिवार में जो भी लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए अपने साथ साथ आगे बढ़ाएं, तभी हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे।
1: जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में आंदोलनरत छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कल भाजपा नेताओं ने गढ़वा जिला बंद का आह्वान किया था। मंगलवार की सुबह में इस बंद से कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था जिला मुख्यालय में प्रभावित हो गई। इस अवसर पर बंद का नेतृत्व कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कुमार चौबे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
4: रात के अंधेरे में विधानसभा के सामने जो छात्र डटे हुए थे उन पर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, भारतीय जनता पार्टी कभी चुप नहीं बैठ सकता है। इसलिए उन छात्र नौजवानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण राज्य में आज राज्य को बंद किया है।
1: जिले में सावन मास शुरू होते ही सभी शिवालयों में शिव जी की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की खूब भीड़ देखने को मिल रही है। सावन मास और शिव जी की पूजा पर हमने सुप्रसिद्ध कर्मकांडी आचार्य आशीष बैद जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया,
5: सावन के पावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिससे निकला हलाहल विष को शिव जी ने पिया था और विष की उष्णता शांत करने के लिए देवताओं ने महादेव का जलाभिषेक किया था। जगत जननी माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सावन में ही कठोर तप किया था।
1: जिले में सावन मास की शुरुआत अच्छी बारिश से हुई है। बारिश होते ही सभी किसान विशेष रूप से धान की रोपाई में जुट गए हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
0: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीटर में 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ज एवं FM 100.5 मेगा हर्ज पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम आदिवासी आखड़ा आज मुंडारी भाषा में।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज रात्रि 10:30 पर एक फिल्म से होगा विशेष। आज कार्यक्रम एक फिल्म से का शीर्षक है शहादत, युवा शक्ति और देशभक्ति। जुड़िएगा और चलिएगा शहादत देने उन युवा शक्तियों को जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। देशभक्ति का रंग दिखाएंगे आज इस विशेष कार्यक्रम में। शीर्षक है शहादत, युवा शक्ति और देशभक्ति।

आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बस थोड़ी ही देर में आप सबका दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं झनकार। झनकार के बाद हम सभी अगले पायदान पर कदम रखेंगे जहां आपको मिलेगा ऑल टाइम हिट्स और उसके बाद कानूनी सलाह। आज आरटीआई कानून की उपयोगिता और चुनौतियों के बारे में भेंटवार्ता होगी। संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे और 8:15 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी चाहत। आज एक फिल्म से कार्यक्रम है विशेष क्योंकि शीर्षक है इसका शहादत युवा शक्ति और देशभक्ति। 23 मार्च 1931 शहीद, ये फिल्म 7 जून 2012 को रिलीज हुई थी और यही है हमारी आज की फिल्म। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा जरूर ये विशेष कार्यक्रम शहादत युवा शक्ति और देशभक्ति।

आपने ट्यून किया एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज जो है आपका ही आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र, और लीजिए अब आप सबका दैनिक फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आप सभी कहते हैं झनकार। सबसे पहले झनकृत करता हुआ और हम सबको एक राज की बात बताता हुआ ये गाना।

किशोर कुमार की ही आवाज है, लेकिन बता दूं कि झनकार का जो पहला गीत आपने सुना था ना, उसे एंटनी पिंटो और किशोर कुमार ने गाया था। और अब फिल्म का नाम है प्यार करके देखो, और किशोर कुमार की आवाज तो आपने सुन ली है, पूरा गीत भी सुन लीजिए। सुनते रहिए झनकार।

प्यार करके देखो, इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे। और बस ये सफर झनकार का अब यहीं तक। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, लीजिए ऑल टाइम हिट्स का समय हुआ। स्वागत आप सबका है इस कार्यक्रम में। बस दो दिन बाद 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे हम सभी। कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स का पहला गीत उन सबको, उन शहीदों को सलाम करते हुए, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में, दो बीघा जमीन के इस फिल्म के इस गीत के साथ करते हैं।

कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजें, ऑल टाइम हिट्स का अगला गीत राम और श्याम इस फिल्म से। सुनते रहिए ऑल टाइम हिट्स।

0: तो ये था आज का ऑल टाइम हिट्स। कानूनी सलाह की ओर बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में आज भेंटवार्ता आरटीआई कानून की उपयोगिता और चुनौतियों के बारे में। इस विषय पर भेंटवार्ताकार हैं आज अधिवक्ता राणा राहुल प्रताप और अधिवक्ता मनमीत कुमार अकेला। इनसे हम सब के लिए बातचीत किया भेंट करता है सैयद मासूम अहमद।
1: श्रोताओं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बाद अलग अलग राज्यों में इसके तहत राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। इसी क्रम में झारखंड में भी झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। सूचना का अधिकार का क्या महत्व है और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं समाज सेवी और सूचना अधिकार कार्यकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल प्रताप। राहुल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो राज्य सूचना आयोग है, इसके गठन का क्या उद्देश्य रहा है?
2: सूचना आयोग का गठन का उद्देश्य रहा है कि राज्य में सूचना या सरकार की कामकाजों की पारदर्शिता बनी रहे, लोग हर चीज की जानकारी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हो, जो उनसे जुड़े हुए हो या जनहित से जुड़े हुए हो, उन मामलाओं को जानकारी ली जा सके सुगमता पूर्वक। अगर हम जन सूचना पदाधिकारी के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं, अगर वह सूचना समय पर नहीं देते हैं, उनके द्वारा निर्धारित 30 दिनों का समय होता है, नहीं देते हैं, तो हम लोगों ने फर्स्ट अपील लोग कर सकते हैं। फर्स्ट अपील करने का भी 30 दिन का समय होता है। जब उस 30 दिन अर्थात 60वें दिन तक जब जवाब नहीं आता है, तब फिर हम राज्य सूचना आयोग तक पहुंचते हैं। प्रथम जन सूचना पदाधिकारी, फिर राज्य सूचना आयोग के पास हम पहुंच करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सूचना आयोग रहने से सामान्यतः देखा गया है कार्यालयों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा ये भय होता है कि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रथम अपील और द्वितीय अपील कर राज्य सूचना आयोग तक पहुँच सकता है, और ऐसे में उस भय से सूचनाएं समय पर मिल जाती है।
1: आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जमीनी स्तर पर आरटीआई कानून को लागू करने में राज्य सूचना आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सवाल ये उठता है कि आम नागरिकों के लिए ये सूचना अधिकार क्यों जरूरी है?
2: आम नागरिकों के लिए देखा जाता है कि बहुतों की समस्याएं, एक सामान्य रूप से एकदम हम ग्रामीण रूप से देख सकते हैं कि बहुतों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनका आवेदन पड़ा हुआ है, वह जानना चाहते हैं आवश्यकताएं है, उनके लिए वही बहुत महत्वपूर्ण है। वह आवेदन दे करके अपने संबंधित पदाधिकारी से अपनी आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो अगर लंबित है बेवजह, तो उसके लिए अपने वरीय पदाधिकारी तक शिकायत कर सकते हैं।
1: राहुल जी, सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने में ये आयोग कितना सहायक है?
2: विगत सूचना अधिकार अधिनियम आने के बाद आपको देखा जा सकता है कि बहुत सारी चीजों की पारदर्शिता आई है। सरकारी पदाधिकारी, पहले जब ये सूचना आयोग नहीं थे या आयोग लागू नहीं था, उसके पहले पदाधिकारी बोलते थे ये हम क्यों देंगे, आप हम सरकारी है, गोपनीय बातों का करके ये टाल देते थे। लेकिन जब से ये सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ है, तब से सूचनाएं मिल रही हैं, और इसमें भ्रष्टाचार से संबंधित, उनके काम की गतिविधि से संबंधित जानकारियां लोगों को सार्वजनिक हो रहा है, और अगर सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो वह अपील पदाधिकारी के माध्यम से दंड भी होने का, आर्थिक दंड तक का प्रावधान है। इवन पदाधिकारी, सूचना पदाधिकारियों को कि ये कह सकते हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है आर्थिक, और उनको भय है दंडात्मक।
1: राहुल जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां सामने हैं?
2: अभी झारखंड राज्य में लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से आपके सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं, जिसके कारण इधर 5 वर्षों में देखा जाएगा सूचना प्राप्त करने वालों हताश हो गए हैं। जो भी व्यक्ति मांगना चाह रहे हैं, पदाधिकारी जान रहे हैं ये जाएंगे कहाँ, इनको मिलेगा तो है नहीं, आयोग तो है नहीं, बस थक हार करके अपील करता है वो हार जाता है। वो आवेदन देने में थक जाता है, तो जाए तो कहाँ जाए, नेचुरली है वह थक हार जाते हैं। और इसका बेनिफिट जन सूचना पदाधिकारी या सरकारी कर्मी प्रथम अपीले पदाधिकारी भरपूर उठाए हैं।
1: कहा जाता है कि जो ये आयोग गठित नहीं था इन वर्षों में तो करीब 25,000 मामले लंबित हो गए थे।
2: निश्चित तौर पर 25,000 से ज्यादा ही होंगे, और बहुतों तो आवेदन देना ही छोड़ दिए, ये बहुत कम आंकड़ा है। अगर फ्लो रहता तो ये संख्याएं और भी अधिक होती। ये आयोग नहीं रहने के कारण लोग आवेदन देना छोड़ दिए और पदाधिकारी सूचना ही नहीं दे रहे। अगर देखा जाएगा आने वाले समय में आप आकलन कर सकते हैं कि सूचना मांगने वालों की भी संख्या बढ़ेगी, प्रथम अपील का भी बाढ़ आएगा, क्योंकि सारे के पास रुका। मेरा खुद का ही लगभग 2-4 ऐसे मामले हैं जो राज्य सूचना आयोग तक पहुंचेंगे। एक नगर निगम से ही रिलेटेड है, एक दो है, सामान्य है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी मोटी चीजें दे सकते थे।
1: और आयोग के गठन को लेकर अंततः न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा।
2: निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय अनेक बार आग्रह किया राज्य सरकार से, उसके परिणाम स्वरूप आज राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय पुनः पुरानी ढंग से संचालित होंगे और झारखंड राज्य के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
1: और इसी उम्मीद के बाद आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र

0: में इस कानून को लेकर जागरूकता की कमी है, तो इसको लेकर क्या पहल होनी चाहिए?
1: निश्चित तौर पर सूचना अधिकार के बारे में अभी ग्रामीण क्षेत्र क्या शहर में भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ग्रामीण में तो और भी इसका अभाव है। कभी कभी राशन कार्ड हो गया या म्यूटेशन हो गया, बहुत छोटी छोटी उनका पेंशन हो गया, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे आपके लिए नहीं हो सकते हैं लेकिन उनके लिए है, और उसके लिए उनके पास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। ऐसे में अगर उनकी सूचना अधिकार का ज्ञान हो, जानकारी हो, तो वह आवेदन दे करके अपनी जो भी आवेदन है, पेंशन से रिलेटेड हो, म्यूटेशन से रिलेटेड हो, जो भी हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड वो जानकारी हासिल कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं।
0: तो राहुल जी, हम सब उम्मीद करते हैं कि राज्य सूचना आयोग पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का लाभ लोगों को भरपूर मिल पाएगा। आपने कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज चर्चा की और लोगों तक इन बात को पहुंचेंगे कि राज्य सूचना आयोग पुनः गतिविधि में आ रहा है, पुनः उसी ऊर्जा उसी निष्ठा के साथ अपना आवेदन दें और आयोग तक पहुंच सकते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे राज्य में सरकारी कार्यालय वही पुरानी धर्रे पर सूचनाएं आदान प्रदान होंगी और लोगों तक सूचनाएं प्राप्त होगा।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओ, जैसा कि आप सब जानते हैं, लंबे अंतराल के बाद झारखंड राज्य सूचना आयोग के 4 सदस्यों ने शपथ ले ली है और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार जल्द ही मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी हो जाएगी। हम सब आशा करते हैं कि जल्द ही आयोग पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित राज्य सूचना आयोग को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मनमीत कुमार अकेला। सबसे पहले मनमीत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो RTI कानून है उसको जमीनी स्तर पर लागू करने में राज्य आयोग की क्या भूमिका है?
2: धन्यवाद। RTI कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने में सबसे पहले जो हमारे भूमिका है, 30 दिन में कोई भी जब सूचना हम मांगते हैं तो 30 दिन में उन्हें देना रहता है, और अगर 30 दिन में हमें सूचना विभाग से नहीं मिलती है तो हम उसके प्रथम अपील और द्वितीय अपील के पास जाते हैं। और अब झारखंड में जो रुकी हुई थी, हमें अच्छा आशा है कि अब इस पे हम लोग द्वितीय अपील और प्रथम अपील पे हम लोग अब जा सकते हैं।
0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम नागरिकों के लिए सूचना आयोग क्यों जरूरी है?
2: देखिए, आम नागरिकों को सूचना आयोग इसलिए जरूरी बन जाता है, जब हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जहां हम रहते हैं वहां पर, चाहे वो राशन का क्षेत्र हो, मनरेगा हो, पेंशन की जानकारी हो, चाहे सरकारी कोई भी विभाग में कोई भी भ्रष्टाचार जब हो रहा है, कोई भी उसकी सूचना हमको जानकारी चाहिए तो हम सूचना अधिकार के तहत ले सकते हैं। बिना आयोग के RTI का अधिकार अधूरा रह जाता है, और RTI जब हम कोई भी विभाग में डालते हैं तो उसमें सरकारी विभाग में कोई भी जानकारी के लिए हम यह RTI का उपयोग करते हैं, और उसके लिए आयोग की होना बहुत जरूरी है।
0: विभागीय भ्रष्टाचार रोकने में आयोग की क्या भूमिका है?
2: देखिए, क्या है ना, भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत ही RTI भूमिका अपना अदा करती है, क्योंकि जब विभाग से जब कोई काम करती है और वह भ्रष्टाचार होता है, चाहे गलत तरीके से काम होता है, तो आम जनता का यह अधिकार है कि हम RTI के तहत उससे सूचनाएं मांग सकते हैं। और जब हम कोई सूचना मांगते हैं तो विभाग पे ये डर बना रहता है कि हम कोई गलत करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक, यह सूचना मांग के हमसे जानकारी ले सकती है, और अगर हम गलत करेंगे तो वह आयोग जाएगी, और आयोग जाने के बाद उस पर पेनल्टी, उस पर मुआवजा ऐसा बनता है, जिससे कि एक डर बना रहता है, भय बना रहता है।
0: मनमीत जी, एक बात ये आमतौर पर देखी जाती है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर आम जनता में उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए, यही कारण है कि इसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

0: तो जागरूकता को लेकर क्या उपाय किया जाना चाहिए?
1: खास करके यह ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी रही है, क्योंकि एक तो वहाँ के आम जनता जो है आरटीआई के लिए आवेदन कैसे लिखना है यह नहीं जानते हैं, उसके साथ कितने रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का हम लगाते हैं वो जानकारी नहीं है। तो इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान एक हम लोग को चलाना चाहिए, और जनता को भी और सरकार को भी एक आरटीआई के लिए कैसे आवेदन करना है, ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, ऑफलाइन कैसे आवेदन करना है, और बहुत सारी जो जानकारियां हैं उसको समय समय पे हमारे पंचायत स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में, खास करके स्कूलों में कॉलेजों में ऐसा एक सेमिनार करके इस पे लिखने के लिए एक जागरूकता अभियान हम लोग चला सकते हैं, जिससे कि हम लोग आम जन आरटीआई के लिए आवेदन कर सके।
0: और सरकार और विभाग के स्तर से भी इस दिशा में पहल होनी चाहिए।
1: जरूर, सरकार के माध्यम से भी, विभाग के माध्यम से भी, और लीगल अवेयरनेस के माध्यम से भी, कॉलेजों में, स्कूलों में, चाहे आम जो जनता का जहां ब्लॉक में चाहे पंचायत में जो लगता है ग्राम सभा, वहां पर भी इस तरह का सभाएं करके उनको इस जागरूकता हम लोग को करना चाहिए, सरकारों को भी करनी चाहिए।
0: तो सूचना अधिकार अधिनियम और राज्य सूचना आयोग को लेकर अधिवक्ता मनमीत कुमार अकेला जी ने काफी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हम लोग आगे जनता के साथ जुड़ते रहें, धन्यवाद।
2: आरटीआई कानून की उपयोगिता और चुनौतियां, इस विषय पर भेंटवार्ता सुन रहे थे हम सभी। भेंटवार्ताकार थे अधिवक्ता राणा राहुल प्रताप और अधिवक्ता मनमीत कुमार अकेला। इनसे हम सब के लिए बातचीत किया सैयद मासूम अहमद ने। कानूनी सलाह अब यहीं तक। रात्रि के 8 बजने को है, आपने ट्यून किया आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र जो है FM 102.1 MHz। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए, देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है। विपक्ष के

0: सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृहमंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की दो खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत। कार्यक्रम आपकी चाहत सुनने से पहले बता दूं कि आज रात 10 बजे एक फिल्म से कार्यक्रम है आप सबके लिए विशेष, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और उसकी रात्रि है और अगले दो दिन बाद हम सभी 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी को लेकर एक विशेष कार्यक्रम एक फिल्म से के अंतर्गत 23 मार्च 1931 शहीद इस फिल्म से गीत ले रहा हूं और शीर्षक दिया हमने शहादत, युवा शक्ति और देशभक्ति। ये विशेष संगीत यात्रा कार्यक्रम, देशभक्ति संगीत यात्रा कार्यक्रम सुनिएगा जरूर। लीजिए अब प्रस्तुत फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। सभी सुनने वाले श्रोताओं का माणिक चक्रवर्ती की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। किशोर कुमार और विजेता पंडित की आवाजें हैं सबसे पहले आज के फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। कार थेफ फिल्म का नाम है और इस गीत को पसंद करते हैं चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंधरा ठाड़ी जिला मधुबनी बिहार से। ये खत पहुंचा शोभिकांत झा सज्जन, मुखिया जी हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और मास्टर एस के सज्जन का। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने हमें खत लिखा है। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से इस गीत को अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव ने हमें खत लिखा और यह अंतिम खत इस पहले गीत के लिए सरगुजरा मैनपाट से पहुंचा सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा का। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम ने खत लिखा। जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार ने हमें खत लिखा और इस गीत को सुनवाने से पहले ही वो हमें धन्यवाद कह रहे हैं। तो गीत तो पहले सुन लीजिए जनाब, उसके बाद तो हम एक दूसरे को धन्यवाद कहेंगे ही इस प्यारे से गीत को सुनने के बाद।

हमारा भी साथ आपके साथ इस तरह से बंधा हुआ है कि जब से आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र आप सबके लिए खुला है, तब से लेकर आज तक और अनंत काल तक हमारा ये संबंध बना रहेगा। और इसी मनोकामना के साथ कि हम एक से एक गीतों को गाते रहे, गुनगुनाते रहे, और अब तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी पूरे भारतवर्ष के लोग एक साथ स्ट्रीम करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम को। तो लीजिए, आप सबने पसंद किया कार्यक्रम का अगला गीत, आपकी चाहत का। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने हमें खत लिखा है इस गीत के लिए, और इस गीत को सुनना चाहते हैं शहनाज फातिमा भी। इनके साथ हैं यास्मीन फातिमा, कनीज फातिमा, बिल्किस फातिमा, शराफत हुसैन, अमानत हुसैन, तबारक हुसैन और मुबारक हुसैन। ये रहते हैं जामा मस्जिद रोड अपने हजारीबाग में, और हजारीबाग से सीधे बरकाखाना की ओर चलते हैं। ओल्ड लिसनर ग्रुप के हमारे मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहिल सुल्ताना और अफजाल ताज और तस्नीम ने हमें खत लिखा है, कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं ये भी, और जगन्नाथ प्रसाद साहू और उनके बहुत सारे चाहने वाले दोस्तों और उनके रिश्तेदारों ने हमें झुमरी तिलैया से खत लिखा है, कार्यक्रम का अगला दूसरा गीत किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल के स्वर में आप सबों ने पसंद किया। फिल्म का नाम है कलाकार। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

गांधी चौक रोपड़ से कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा पंजाब में, ये है रोपड़। और हरदेव मीका हैं, बलदेव बीरक हैं, जैतेग बीरक और मीका बीरक हैं। पटेल नगर मलोट पंजाब से एक खत अगले गीत के लिए डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया का पहुंचा। यह अगला खत मेरे हाथ में भंडार सिवनी कोंडा गांव छत्तीसगढ़ का है। सुभाष चक्रधारी, कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी ने हमें खत लिखा है। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहराजुद्दीन और कैशरुद्दीन और नजमदीन ने हमें खत लिखा। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और प्रमिला के साथ ज्योति श्याम कुंवर ने हमें खत लिखा। और ये अमन वर्मा है, साथ में है इनके रविंद्र वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया वर्मा, परी, कोको, चारू और आरके वर्मा, सीसीएल बड़का काना के ये हमारे श्रोता हैं। लीजिए आप सबकी पसंद पर हिना फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

आपके अंदर भी आपके पसंद के गीत होंगे, हम सबके साथ शेयर कीजिए, हम सब भी सुनना चाहते हैं। कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन संख्या 825301, पोस्ट बॉक्स नंबर 1। बस ये छोटा सा पता, पोस्ट कार्ड पर अपना नाम, अपने चाहने वाले दोस्त यार का नाम लिखिए, फिल्म का नाम और गीत के बोल लिखिए। आपके भी गीत पूरे भारतवर्ष में आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से गूंजेंगे। हम सभी गाएंगे आपके पसंद के गीत आपके साथ।

छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने हमें अगले गीत के लिए खत लिखा है। दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू, उनके मम्मी पापा और ढेर सारे साथी गण ने हमें खत मेन रोड बड़का गांव से लिखा है। आप सभी हैं आशिया मुख्तार और काव्यधारा। साथी बाबूलाल ठाकुर, साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मिनी और प्रियंका दीपिका ने चेपाकला बड़का गांव से हमें खत लिखा है। और सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया शोएब खान और मुस्तबा खान के साथ रऊफ भाई और शाहिद भाई ने हमें खत लिखा। गांधीबाग अकोला से यह अंतिम खत तो इस गीत के लिए रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने हमें लिखा। तो आइए आप सबकी पसंद पर विनोद राठौड़ की आवाज को सुना जाए। फिल्म का नाम है चाहत।

और अब डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर ने हमें जो खत लिखा वो पढ़ रहा हूं। महादेव घाट अमलेश्वर से अगला गीत सुनना चाहते हैं। भाटपारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा ने हमें खत लिखा और देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश तांती और देवेंद्र जी ने हमें बड़ा बाम्बो सुपाई साई से खत लिखा। गांधी चौक से जो बाड़मेर राजस्थान में है, बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष ने हमें खत लिखा है। कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सबके लिए, आप ही की पसंद का, जीत फिल्म से, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ें।

अपने दोस्त माणिक के साथ सुन रहे थे आप सभी फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या का आज का अंक होगा, न्यूज एट 9 आप सुनेंगे। इन सबको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे, साथ ही यहीं से स्पॉटलाइट भी होगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया।

0: था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
3: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार

0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा हवाई।
2: अभी भी।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गईं और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

0: इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।
1: मैं

0: फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।
1: बंकर!

0: झुक जाए दोनों आंखें, मारो तो छुरपट जाए छुरपट जाए, दोनों आंखें मारो तो छुरपट जाए छुरपट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।
1: माना माना मैं

0: Love.
1: Mamma mia.
2: Bom bom.
1: Oh, mamma mia.
2: Bom bom.
3: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातूंदकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गई। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ two people who are equal. Life is a long journey. Meera, sometimes you will feel you're less. Kevin, sometimes you will also feel you're less than Meera. Try to help each other to feel equal. It will be nice.
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।
3: बदल

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है ये, और अब यहां रजनीगंधा की महफिल सजेगी। महफिल में सबसे पहले ये सुगंधित गीत आप तक पहुंचेगा, राम तेरी गंगा मैली से, जिसे हमने लिया लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजें हैं।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजें निगाहें, यह है फिल्म का नाम और कार्यक्रम चल रहा है आपके एफएम सेट पर रजनीगंधा।

अंतिम नगमा जमीर फिल्म से हमने चुना आप सबके लिए कुमार शानू गा रहे हैं इस गीत को।

चल रहा था रजनीगंधा, अब आगे एक फिल्म से आज विशेष है। सुनवाएंगे आपको बस थोड़ी ही देर में, 10:30 बस होने ही को हैं।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबों का दोस्त माणिक चक्रवर्ती। संयोग देखिए, आज से दो दिन के बाद हम 80वें स्वतंत्रता दिवस को भी मना रहे होंगे। तो FM 102.1 MHz के हमारे श्रोताओं, लीजिए आज की ये विशेष प्रस्तुति, जिसमें हम बात करेंगे उस युवा शक्ति की जो सपने भी देखती है और उन सपनों को सच करने का साहस भी रखती है। हम बात करेंगे उन युवाओं की जिनकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन जिनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे नौजवानों ने हमें सिखाया कि देश के लिए जीना भी गौरव है और जरूरत पड़े तो देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना भी। और आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही फिल्म के गीत जिसमें क्रांति है, प्रेम है, मातृभूमि है, बलिदान है और आजादी की पुकार है। गुड्डू धनोवा निर्देशित यह फिल्म 7 जून 2002 की को रिलीज हुई और इसमें बॉबी देओल ने भगत सिंह तथा सनी देओल ने चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभाई। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की विशेष संगीत यात्रा एक फिल्म से, जो विशेष सज संवर कर आई है, शीर्षक लेकर शहादत, युवा शक्ति और देशभक्ति। और पहला गीत उस भावना को समर्पित जिसमें प्रेम भी है और विरह भी। सुनना शुरू कर चुके हैं आप सभी शहादत, युवा शक्ति और देशभक्ति एक फिल्म से के अंतर्गत। बता दूं, ये फिल्म है 23 मार्च 1931 शहीद

0: जोगिया की गूंज अभी आपके मन में गूंज रही होगी, लेकिन क्रांति की राह पर चलने वाला युवा केवल भावनाओं में नहीं रुकता, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और जब लक्ष्य हो मातृभूमि की आजादी, तो फिर दिल एक ही आवाज निकालती है। वह बसंती रंग केवल कपड़े का रंग नहीं, वह त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक बन जाती है।
1: मेरा रंग दे बसंती चोली।

जब कोई युवा अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए सपना देखता है तब उसकी जिंदगी का अर्थ ही बदल जाता है। क्या बात है इस गीत में, है ना। आज के युवाओं के सामने लड़ाई का स्वरूप अलग हो चुका है। आज लड़ाई है बेरोजगारी से, नशे से, अशिक्षा से, भ्रष्टाचार से, भेदभाव से और उन तमाम चुनौतियों से जो हमारे देश की प्रगति के रास्ते में खड़ी है। इसलिए आज की युवा शक्ति से सिर्फ इतना कहना है, आजादी से ठीक दो रात पहले देश को आपकी ऊर्जा चाहिए, आपकी प्रतिभा चाहिए, आपका ईमान चाहिए और आपका चरित्र चाहिए। मेरा रंग

देश को आपकी ऊर्जा चाहिए, आपकी प्रतिभा चाहिए, आपका ईमान और आपका चरित्र चाहिए। आइए संकल्प लें, इस वतन के आगे अपने आप को समर्पित कर ये शपथ लें। उन शहादत को याद करते हुए अपनी युवा शक्ति का उपयोग करेंगे देशभक्ति।

ऐ वतन, ये दो शब्द ही काफी है उस रिश्ते को समझने के लिए जो एक इंसान का अपनी मिट्टी से होता है। वतन केवल नक्शे पर बनी हुई एक सीमा नहीं, वतन है हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे खेत, हमारी नदियां, हमारे शहर, हमारे गांव और उन करोड़ों लोगों की उम्मीदें जिनके बेहतर भविष्य के लिए आज का युवा मेहनत कर रहा है। और जब देश पुकारता है तो युवा शक्ति से यही आवाज उठती है।

दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है। इतिहास उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने वर्तमान को कुर्बान करके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाया। तो सोचिए ना, भगत सिंह जब शहीद हुए तब उनकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी।

जी हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सोचिए, जिस उम्र में आज का युवा अपने कैरियर और भविष्य की चिंता करता है, उसी उम्र में भगत सिंह ने पूरे देश के भविष्य की चिंता की। इसलिए भगत सिंह केवल इतिहास के पन्नों में नहीं, वे आज भी भारत के युवाओं की चेतना में जीवित है। और अब सुनिए, ये वही पंक्ति, क्रांति की आग महसूस होती है इससे।

साथियों, ऐसे गीत केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमें यह समझना होगा कि देश के लिए बलिदान का अर्थ हमेशा जान देना नहीं होता। कभी अपनी बुरी आदत छोड़ देना भी बलिदान है, कभी गलत रास्ते से लौट आना भी साहस है, कभी किसी जरूरतमंद का हाथ थाम लेना भी देश सेवा है, और कभी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना भी राष्ट्रभक्ति है। हमारे दिल में है, क्योंकि देश तभी मजबूत होगा जब उसका युवा चरित्रवान होगा। और अब हमारी इस विशेष संगीत यात्रा का ये आखिरी पड़ाव।

देश तभी मजबूत होगा जब उसका युवा चरित्रवान होगा। और अब हमारी इस विशेष संगीत यात्रा का ये आखिरी पड़ाव है। तो युवा साथियों, ये थी हमारी विशेष प्रस्तुति एक फिल्म से। एक फिल्म से हमने सुने 6 गीत, लेकिन इन गीतों ने हमें 6 अलग अलग संदेश दिए, प्रेम, देश, साहस, क्रांति, बलिदान और भविष्य की जिम्मेदारी।

याद रखिए, युवा वह नहीं जो केवल उम्र से जवान हो, युवा वह है जिसके विचार जवान हो, जिसके सपने जवान हो और जिसका हौसला हर चुनौती के सामने जवान हो।

तो चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम एक संकल्प लें, नशे से दूर रहेंगे, नफरत से दूर रहेंगे, भेदभाव से दूर रहेंगे और अपने ज्ञान, अपने श्रम और अपनी प्रतिभा से भारत को मजबूत बनाएंगे।

तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति एक फिल्म से के अंतर्गत शहादत युवा शक्ति और देशभक्ति। अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती को इस विशेष कार्यक्रम से अब अनुमति दीजिए। ये 23 मार्च 1931 शहीद फिल्म से हमने गीतों को चुना। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। बस थोड़ी ही देर में 11 बजेंगे, 11 बजते ही हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग